ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर बॉलीवुड की अपडेट्स देते हुए सुनिएगा कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर

नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस गाने में जैसे कि बताया गया है कि ना तो धूप चुननी है, ना छांव चुननी है, ना सुख दुख चुनना है, ना दुख चुनना है, और केवल सेल्फिश होके बस अपने बारे में सोचना है। और ऐसे में आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस राह में शायद बहुत कुछ खो जाता है। मैं हूं रेचा आपके साथ, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं, इसके अलावा आप न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप पर भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उन लोगों के बारे में, उस प्रवृत्ति के बारे में जहां पर आप केवल चलते रहते हैं आपकी मंजिल आने के बाद भी, जिसका आप सपना देख रहे हैं बरसों से, सालों से, जिसके लिए स्ट्रगल किया आपने, वो मिलने के बाद भी जब ये आपको लगता है कि खोज खत्म नहीं हुई है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे करते करते करते करते एहसास होता है कि दरअसल हाथ में कुछ बचा ही नहीं, ना अपने बचे, ना सपने बचे, ना राह बची, ना मंजिल बची, और आप उस मोड़ पर केवल अकेले खड़े होते हैं। तो कहते हैं ना कि हमेशा इस कार्यक्रम में मैंने आपको कहा है कि रुकना नहीं है, चलते जाना है, बढ़ते जाना है, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। लेकिन मंजिल मिल जाने के बाद ठहर जाना, रुक जाना, फिर समेटना उन खुशियों को जो तुम्हारे हक की हैं, अपनों को साथ लेके चलना, और फिर देखना जिंदगी के उस एक नए मंजर को जो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका इंतज़ार।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप सुन रहे हैं सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली एनसीआर में और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। साथ ही न्यूज ऑन एयर की जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। एक बहुत ही छोटी सी कहानी आपके लेकर आई हूं सोशल मीडिया के माध्यम से और जरूर आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक समय की बात है कि पहाड़ों पर एक व्यक्ति ने घर बनाने का सोचा। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम राम था और राम ने सोचा कि मैं पहाड़ों पर एक घर बनाता हूँ बहुत सुंदर, क्योंकि जो नॉर्मल ये अपने क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, ऐसे में बहुत अच्छा रहेगा अगर पहाड़ों पर अपना खुद का एक घर हो जहाँ पर जाकर गर्मियों में रहा जा सके। तो उसने एक पहाड़ों पर घर बनाने का सोचा। अब जब घर बनाने का सोचा तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट होती है घर बनाने की वो होती है पानी के सोर्स का इंतजाम करना। तो बोरवेल करवाना था और ऐसे में उसने एक व्यक्ति को ढूंढा। बोरवेल करने वाला आया और उसने कहा कि ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक बात कहूँगा आपसे जो आप अगर माने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आगे काम को कंटिन्यू करना। राम ने कहा कि बताओ भाई तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा कि हम पानी को खोदना शुरू करेंगे, बोरवेल डालना शुरू करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमें पानी का सोर्स मिल जाएगा उससे आगे हम बोरवेल को की खुदाई नहीं करेंगे। तो राम बड़ा हैरान हुआ, कहता भाई क्यों, हो सकता है नीचे और अच्छा सोर्स मिल जाए। कहता सर ये पहाड़ हैं, यहाँ पहाड़ों के बीच में आपको थोड़ा सा पानी का सोर्स मिल जाता है जहाँ निरंतर पानी रिस रिस के पहुँचता रहता है और पानी की सप्लाई कभी रुकती नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा कि और गहरा करो तो हो सकता है कि बोरवेल कहीं पत्थरों में फंस जाए और इससे आपका और मेरा हम दोनों का नुकसान हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जहां पानी मिल जाएगा आपको वहां रुकना पड़ेगा। राम को इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बोरवेल की खुदाई शुरू हुई, पानी का सोर्स मिला, लेकिन फिर राम ने आदतवश, जैसे कि हम ह्यूमंस की आदत होती है कि हमें चीज़ मिलने के बाद फिर लगता है थोड़ा सा और मिल जाए तो अच्छा है, उसने फिर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी और खुदाई करो ताकि पानी का सोर्स, उसने कहा कि मैंने आपको कहा था कि जब आप पानी का सोर्स मिलने के बाद आगे खुदाई करने का अर्थ है कि मशीन को किसी पत्थर में फंसा देना और उसके बाद दोबारा पानी का सोर्स ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना कि जब सुकून मंजिल मिल जाती है तो न जाने क्यों ये दिल परेशान होकर फिर किसी तलाश में निकल पड़ता है। बस यही मन को रोक लेना है, यही मन को संभाल लेना है, यही मन से कहना है कि बस अब जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, अब तो बस मौज करो। अगर ज़्यादा है तो दूसरों को दो और अगर कम है तो उसके लिए प्रयास करो। कभी भी ना किसी से जलन करनी है और ना ही खुद के पास ज़्यादा आ जाने पर घमंड करना है। बस यूं ही जीवन चलाते रहिए, देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। मैं हूं ऋचा आपके साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर।

0: बिंदास बोल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध का तीसरा अध्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां सूद गोस्वामी जी से शौनक जी कह रहे हैं कि आप हमें भगवत कथा सुनाइए। और आपने ये सुना जहां शौनक जी ने कहा था कि हे सूत जी, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को नहीं सुनता या गुणगान को नहीं गायन करता, उसकी आयु व्यर्थ होती है। यानी जो भगवान के गुणों का गान करता है, श्रवण करता है, बस वही जीता है। वरना तो ये भगवान सूर्य प्रतिदिन उदित होते हैं, अस्त होते हैं और उसकी आयु छीनते जाते हैं। और फिर आपने ये भी सुना था, बड़े ही दुख के साथ शौनक जी ने कहा था कि क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? अरे, जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वो नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। देखिए, शास्त्र डांट रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। आज मिला है, फिर ना भी मिले। तो शौनक जी ने कहा था कि जो मनुष्य भगवान की लीला कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान गड्ढे जैसे हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, उसकी जीव मेंढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो रहना और ना रहना सब बराबर है, ना ही रहे तो अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वो रेशमी वस्त्र से सजा हो या मुकुट से युक्त हो, तो भी बेकार है, बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से आभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की मूर्ति तीर्थ आदि का दर्शन नहीं करती, वो मोरों के पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान बेकार हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान

की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। शौनक जी बहुत दुखी हैं लोगों की अवस्था को देखकर, सोचते हैं कि देखिए कितना आसान है भगवान को पाना, और फिर भी ये लोग अपना मुंह भगवान की तरफ से हटाए रहते हैं, विमुखी हैं सब के सब। और आज बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक कह रहे हैं, 23वां श्लोक है, जहां उन्होंने कहा शौनक जी ने, जीवन छवो भागवतांग्री रेणुम न जातु मर्तयो भील भेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस तुलसया शस्वन छवो यस्तु न वेद गंधम। आ, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों की चरणों की धूल अपने सिर पर कभी नहीं चढ़ाई, अपने शरीर पर कभी नहीं लगाया, वो जीता हुआ भी मुर्दा है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वो सांस लेता हुआ भी श्वास रहित शव है, शव, डेड बॉडी। तो सुनने में तो बड़ा विचित्र लगेगा, क्योंकि ऐसे तो अनेक लोग हैं जो भगवान के भक्तों की चरण धूली को अपने सिर पर नहीं रखते, अपने माथे पर नहीं लगाते। वो कहते हैं ये तो मेंटल स्लेवरी है, मानसिक गुलामी। हम क्यों गुलाम बने किसी मनुष्य का? वो भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान के भक्तों को जानना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि भगवान के भक्त दिखते मनुष्य हैं लेकिन होते भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान के प्रति ये लोग सरेंडर्ड रहते हैं, पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। और भगवान ने कहा है गीता में कि चाहे मैं समस्त लोगों के प्रति समभाव रखता हूं, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, है ना। तो भक्तों के प्रति भगवान बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में यही तो कहा है ना, समो आम सर्वभूतेषु नामे द्विष्व अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्, कि मैं समस्त भूतों प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखता हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, परंतु जो भक्ति के साथ प्रेम से मेरा भजन करते हैं वो मुझ में अवस्थान करते हैं, मैं भी उसी भक्त में अवस्थान करता हूँ, यानी रहता हूँ। और वहीं भगवान ने ये भी कहा है, नाहमात्मान माशा से मद भक्ते साधु भीर बिना श्यं चात्यंतिकी ब्रह्मन ये शाम गति रहम परा, कि हे ब्रह्मन, जिनकी मैं ही एकमात्र परागति हूँ, उन सब भक्तों के अलावा मैं अपनी आत्मा को भी, अपनी आत्यंत की श्री को भी, लक्ष्मी जी को भी प्रेम नहीं करता, उनकी भी कामना नहीं करता। तो प्रेमिक भक्तों के प्रति भगवान बहुत ही प्रेम रखते हैं, भाव रखते हैं। और भगवान जो है हमेशा हमेशा भक्तों के प्रति पक्षपात वाला रवैया रखते हैं, यानी भक्तों का पक्षपात करते हैं, भक्तों का ही पक्ष लेते हैं, ये उनकी आदत है, ये उनका स्वभाव सिद्ध धर्म है। तो ऐसे प्रेमी भक्तों के चरणों की धूल, जिनकी वश में भगवान भी हैं, अगर कोई अपने सिर पर ना चढ़ाए तो शास्त्र कहते हैं वो जीता हुआ भी मुर्दा है, क्योंकि भक्तों के चरण की धूली को अपने सिर पर लगाने से हम अतिशय अतिशय पवित्र हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए हमारे आचार्यों ने भी कहा है, वैष्णव चरण रेणु भूषण कोरिया तनु जहां होइते अनुभव होय मार्जन होय भजन साधु संगे अनुखण अज्ञान अविद्या पराजय, है ना। तो वैष्णव चरण की असाधारण महिमा सभी शास्त्रों ने की है। श्रीमद् भागवत में जब जड़ भरत जी, जो कि ब्रह्म ऋषि थे, वो जा रहे थे, तब उन्होंने महाराज रहुगण की पालकी उठाई हुई थी, और रहुगण ने
ये देखा कि पालकी तो हिलडुल रही है।

तब वो क्रोधित हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए जड़ भरत जी पर। तब जड़ भरत जी ने कहा, रहु गणे तत्तपसा न याति न चेजया निर्वण पाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यर विना महत्पाद रजोभिषेकम। कि भाई महत जनों के चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना तपस्या, वैदिक कर्म, अन्नादि दान, घर आदि निर्माण के लिए परोपकार, वेदाभ्यास या फिर जल अग्नि सूर्य आदि की उपासना या अन्य किसी भी साधना से भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना भगवत तत्व ज्ञान के भक्ति प्रारंभ नहीं हो सकती, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और प्रेम प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए महत जनों के पद रज से अभिषिक्त होना ही होता है, नहीं तो कोई सोचे हम तपस्या कर लेंगे भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी, वैदिक कर्म कर लेंगे या फिर हम परोपकार कर लेंगे, गरीबों को अन्न आदि का दान कर देंगे, लोगों के लिए घर बना देंगे, तो उससे भी भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रहलाद जी ने भी अपने पिता हिरण्यकश्यपु जी से कहा है श्रीमद् भागवतम में, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशत् दनर्थापगमो यदर्थः मह्यसां पादरजो अभिषेकम् निष्किंचनानाम ना वृणीत यावत। कि जब तक विषय अभिमान शून्य महत भक्तों की चरण धूलि द्वारा अभिषेक नहीं होता तब तक विश्व मानव की मति श्री भगवत चरणों को स्पर्श कर ही नहीं सकती, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में किसी की मति उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जिसके द्वारा अर्थात श्री कृष्ण पाद पद्म निष्ठ मति द्वारा ही सारे अनर्थ स्वतः दूर हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ना। यानी ऐसे लोग जो प्रेमिक भक्त हैं भगवान के, अगर उनके चरण की धूली से अपने आप को अभिषिक्त नहीं किया, अपने माथे पर नहीं लगाया, तब तक भगवान के चरणों में हमारी रति मति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। अब ये बात मैं कह रही हूं ऐसा नहीं है, शास्त्र कह रहे हैं, ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये बात जड़ भरत जी कह रहे हैं। अगर हम शास्त्रों को खंगालें तो अनेक जगह ऐसे श्लोक हमें मिल जाएंगे जहां पर महत के चरण रज की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और कितना आसान है ये, इससे हमारा अहंकार भी दूर होता है, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति में, क्योंकि हम अपने बल पर बहुत भरोसा रखते हैं और भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं। देखेंगे अरे हम बैठेंगे, बैठे रह जाएंगे, भजन करते रह जाएंगे तो ये भगवान हमें खिलाएगा। उत्तर ये है कि अगर 100% मति भगवान में लग जाए तो हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, भगवान खिला ही देंगे, व्यवस्था हो ही जाएगी। कैसे होगी वो भगवान जाने, हम तो सिर्फ भगवान को जानना चाहते हैं, सीधी सी बात यह है ना। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो भक्तों के वश में हैं, और ऐसे भक्तों की चरण धूली अगर हम अपने सिर पर धारण करते हैं तभी ये सिर उत्तम अंग कहला सकता है, वरना तो कहाँ है ये उत्तम अंग, तो बेकार ही है ना। और भी कहा गया है, एजे तुम्हार पादोदक पुण्य जल तीर्थेरे करे तीर्थ है नो सुनिर्मल जत एक ब्रह्मांड वैसे अमार देहेते जतो लोकपाल सब अमार सोहिते। पादोदक दिया आजी कोरिला पवित्र अक्षय होइया रहो तुम्हार चरित्र एजे तुम्हार श्री चरण चिन्ह धूली वक्खे राखिलाम आमी होई कुतूहली लक्ष्मी संगे निज वक्खे दिलो आमी स्थान वेदे जनु श्री वत्स लांछन बोले नाम। आहा, देखिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है दशम स्कंध में, जहां पर सत्व की परीक्षा लेने के लिए कि किसके अंदर सत्व, सतोगुण नहीं सत्व, शुद्ध सत्व अधिक है। भृगु मुनि जी जब पहले महादेव के पास गए तो महादेव ने भगवान नारायण की महिमा को दिखाने के लिए कृत्रिम क्रोध प्रकाशित किया भृगु जी के ऊपर, क्योंकि वो जब गए भृगु जी

तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी उनके पिता ही हैं पर उनको नमस्कार नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। महादेव के पास गए और महादेव को बोला आप तो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, आप तो ये हैं वो हैं। तो महादेव जी इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि वो भगवान की महिमा का उत्थान चाहते थे कि भगवान की महिमा सब जाने, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यही भक्तों का स्वभाव होता है, वो भगवान को ही आगे रखते हैं, उन्हीं की महिमा सबको सुनाते हैं, उन्हीं की महिमा सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने भी क्रोध प्रकाशित किया। लेकिन जब उन्होंने श्री नारायण के वक्ष पर पदाघात किया, इन सबको तो कुछ कुछ बोला था ब्रह्मा जी को और महादेव को, लेकिन नारायण जी लक्ष्मी जी के साथ थे और भृगु जी गए और तुरंत ही उनके वक्ष पर अपने चरण से आघात किया, प्रहार किया, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं लात मार दी। तब पुनी ही सहलोक का माम लोक पालान शमदगतान पादोदकेन भवतस्तीर्थानाम तीर्थकारिणा अद्याहम भगवन लक्ष्मया आसमय कांत भाजनम वत्स्यत यूरसी में भूतिर्भवत पाद हताम हंसा। यानी आप के जो चरण हैं, आपके चरण को कोई धोए तो आपके चरण का पुण्य जल समस्त तीर्थों को भी तीर्थ कर देता है, इतना सुनिर्मल है। मेरे प्रत्येक रोम में जितने ब्रह्मांड बसे हुए हैं, जितने ब्रह्मांड स्थित हैं, जितने लोकपाल हैं, आज आपने समस्त ब्रह्मांड को, लोकपालों को मुझे पवित्र कर दिया क्योंकि आज आपने अपना पादोदक दे दिया। तो आपका चरित्र अक्षय रहे, ये जो आप किसी चरण की धूली है, आज से मैंने इसे अपने वक्ष पर स्थापित किया। लक्ष्मी जी को जैसे श्री रेखा को भगवान ने अपने वक्ष पर स्थान दिया है, ऐसे ही लक्ष्मी जी के साथ मैंने आपके चरणों को अपने हृदय पर स्थान दिया आज से, और इसे सब शिवत्स लांछन के नाम से जानेंगे या शिवत्स चिन्ह के नाम से जानेंगे। इतनी बड़ी बात है ना। और वैसे भी भगवान भी जो है भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर पर लेने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुएत्यंग्री रेणु भी। भागवत जी में कहा है कि हे उद्धव, मैं भक्त की चरण धूलि से भक्ति प्राप्त करा के ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा, इसलिए भक्त का अनुगमन करता हूँ, उनके पीछे पीछे चलता हूँ। और इसी विशेष कलयुग में श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसास्वादन की लालसा से वैष्णवों की पदरज ग्रहण की है। सबार चरण धूलि लोए विश्वम्भर, है ना। और ये कहा भी गया है भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल यही तीन सेवा हुई थे कृष्ण प्रेमा होय पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारी अकोय। यानी भक्तों की चरण धूलि, भक्तों का चरण धौत जल और भक्तों का अवशिष्ट प्रसाद उच्छिष्ट, इनमें महाबल होता है जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है। इन तीनों की सेवा करने से, तीनों को प्राप्त करने से कृष्ण प्रेम होता है, समस्त शास्त्र ये कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जगत के नर नारी जैसे देह को अलंकृत करने के लिए बड़े ही यत्न से आभूषण आदि धारण करते हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को सजाने के लिए बड़े ही यत्न पूर्वक भक्ति से भरकर वैष्णव चरण रेणु का सेवन करना होगा, है ना। क्योंकि वैष्णवानाम परा भक्ति ही, वैष्णवों के प्रति परम भक्ति रखोगे तभी भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। भगवान ने भी कहा है कि जो लोग केवल मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे यथार्थ भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं। इसीलिए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए हर तरीके से वैष्णवों को संतुष्ट करना होगा। वैष्णवों के प्रसन्न रहने से ही विष्णु प्रसन्न होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और यदि वैष्णवगण थोड़े भी अपमानित हुए तो भगवान की चाहे हजार तरीके से पूजा क्यों ना की जाए, वो प्रसन्न नहीं होते। प्रसीदति न विश्वात्मा वैष्णवे चापमानिते, है ना। उद्धव जी को भगवान ने कहा है ना मद भक्त पूज्याभिधिका, मेरी पूजा की तुलना में मेरे भक्त की पूजा से मुझे कहीं अधिक संतोष होता है, इसलिए मेरे भक्त की पूजा करना। महत सेवा से भक्ति प्राप्ति सुनिश्चित है, इसमें अनेक प्रमाण हैं।

0: तो वैष्णव चरण रेणु से जब देह को आभूषित किया जाता है, तब एक भक्त को साध्य साधन विषय में, संबंध अभिधेय प्रयोजन विषय में अनुभव प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ी बात है और यही चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा और हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक पर चर्चा जहां पर शौनक जी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रेमिक भक्तों की चरण धूली से अभिषिक्त नहीं होता, उसका स्पर्श नहीं पाता, अपने माथे पर नहीं लगाता, वो व्यक्ति जीते जी मरा पड़ा है, क्योंकि वो भगवान के बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएगा। जीवित है मगर उसका जो अंग है वो प्रेत शरीर की तरह साधुओं को भय दिखाता है, यानी वो कभी भी भक्तों के पास जाता ही नहीं है, है ना? क्योंकि जैसे प्रेत होते हैं ना, वो भगवान के बड़े बड़े भक्तों के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, वो डरते हैं उनसे। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करता, उनके चरण रेणु का सम्मान नहीं करता, तो वो भक्तों से डरता है। और वो चाहे कितना भी भगवान की सेवा करने का प्रयास करे तो भी भगवान उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते हैं, है ना? कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पहले एक एक अंग की निंदा की शौनक जी ने, कि जो कान भगवत कथा नहीं सुनते वो कान कैसे हैं, जो रसना भगवत नाम नहीं लेती वो रसना कैसी है। अब जो है समस्त इंद्रियों का समुच्चय है, जो समुदय है, उसी की निंदा कर रहे हैं कि अगर समस्त अंगों पर हमने भगवान के भक्तों की चरण रेणु को नहीं लगाया तो फिर हम क्या है, हम निंदनीय हैं, जीते जी हम मरे पड़े हैं। वो व्यक्ति क्या है, जीवन छवा, जीवित अवस्था में ही शव जैसा है। तो चाहे वो कितने भी अद्भुत कार्य कर ले, जैसे प्रेत का शरीर है वो तो कितने अद्भुत कार्य करता है, ये उठा देता है, वो पटक देता है, क्या नहीं कर देता है, लेकिन तो भी भयभीत हो जाता है साधुओं से, उनके पास नहीं जाता है। और इसी के साथ एक और बात कही, श्री विष्णु पद्या मनुज स्तुलस्या स्वच्छन छवो यंतु न वेद गंधम। ये देखिए बड़ी बात है कि भगवान के चरणों में जो तुलसी है, जिसे भक्त बड़े प्रेम से अर्पित करते हैं भगवान के श्री चरणों में, जो व्यक्ति उस तुलसी को लेकर अपनी नासिका के द्वारा उसके गंध नहीं लेता और फिर उसकी सराहना नहीं करता कि हे प्रभु, आपके चरणों की तुलसी गंध कितनी अपूर्व है। जैसे कि वो चार कुमार थे ना, सनकादिक चार कुमार, जब वो वैकुंठ गए थे और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था, उसके बाद भगवान दौड़े दौड़े आए थे, तो उनके चरणों में कितनी ही तुलसी लगी हुई थी और उन तुलसी के गंध से ये चार कुमार जो ब्रह्मानंदी थे, उनका ब्रह्मानंद तिरोहित हो गया और वो भगवत आनंद को प्राप्त करने के लिए क्रंदन करने लगे कि हमें भगवत आनंद चाहिए, हम आपके दासानुदास होना चाहते हैं, हमें आपकी कथा सुननी है, हमारे कानों में आकाश का गुण भर दीजिए, हमारे कान विस्तृत हो जाएं, हमारे कान गहरे हो जाएं, हमारे कान में ऐसा गुण दे दीजिए कि भक्तों की कथा, यानी भक्तों के मुख से आपकी जो कथा है वो हम सुनते रहें और कभी अघाएं नहीं, कभी हम उकताए नहीं। देखिए, जो भगवत प्रेमी होता है वो सिर्फ भगवान की कथा ही सुनना चाहता है, उन्हें ही जानना चाहता है, उनको ही पाना चाहता है, उनकी ही सेवा भगवत प्रेमी भक्त को चाहिए, वो और कुछ चाहता ही नहीं है, है ना। तो देखिए, भगवान के चरणों से तो गंगा जी भी निकली है, लेकिन यहाँ पर तुलसी जी के बारे में बताया है कि तुलसी जी के गंध को जो नहीं जानता है और तुलसी जी के गंध ग्रहण करके जो आनंदित नहीं होता है, उसको भी कहा कि वो क्या है, वो श्वसन छवा, यानी वो व्यक्ति भी जीवित अवस्था में ही मृत देह तुल्य प्रेत शरीर की तरह है, मरा पड़ा है, उसका भी कोई काम नहीं है। देखिए, ये इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं। वास्तव में देखा जाए तो शौनक जी बहुत दुखी हो रहे हैं जीवों की अवस्था देखकर, कि इतना आसान है भगवान के प्रति प्रेम को पाना, इतना आसान है, करना ही क्या है, कथा सुननी है, भगवान का नाम लेना है जीव से, भगवान के भक्तों की चरण रेणु चरण धूल को अपने माथे से लगाना है, अंगों से लगाना है, ठाकुर जी के चरणों में तुलसी अर्पित करनी है और बाद में प्रसादित तुलसी को अपने नाक से सूंघना है और सूंघ करके आनंदित तो होना है। कहीं बाहर जाने का मन है तो बाहर भी जाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के लीला स्थलों में आना चाहिए, धाम जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, वहाँ देवालयों का और वहाँ के भक्तों से मिलना चाहिए, भक्तों के श्रीमुख से भगवान की कथाओं का पान करना चाहिए। तो कितना आसान है, इतना आसान, और इतने आसान कार्य को भी अगर कोई नहीं करता है, इतनी आसानी से भगवान मिल जाते हैं और फिर भी कोई व्यक्ति ही इस तरफ नहीं मुड़ता है, तो शौनक जी को बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत दुख हो रहा है कि ये क्या है, ये तो कुकुर शुकुर ऊंट गर्दभ की तरह का जीवन है, ये जीवन तो मनुष्य का जीवन है ही नहीं। विचित्र बात यह है कि एक बिल्ली का बच्चा जन्म से बिल्ली होता है, एक कुत्ते का बच्चा जन्म से कुत्ता होता है, जानवरों के बच्चे जन्म से जानवर ही होते हैं, पर मनुष्य का बच्चा जन्म से मनुष्य नहीं होता, उसे मनुष्य बनाना पड़ता है। मनुष्य वो तभी बनेगा जब वो भगवान की तरफ मुड़ेगा, जब भगवान की तरफ मुड़ेगा तो उसमें मनुष्यता आएगी, जब मनुष्यता आएगी, सदयता आएगी, दयालु वो हो जाएगा, तब वो मनुष्य बन जाएगा, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो पशु के समान है। बहुत बड़ी बात है और ये इतनी विशिष्ट बात है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी बलशाली हो, सबको भगवान के भजन में आना चाहिए, सबको, क्योंकि भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। अगर बच्चा अपने पिता से विद्रोह करता है, पिता की तरफ नहीं मुड़ता है, तो बच्चा फिर आवारा हो जाता है, उसकी क्या गति होगी। पिता के घर में खूब संपत्ति है लेकिन पिता का वो सम्मान नहीं करता और यहाँ वहाँ ठोकरे खाता रहता है, यही हमारी स्थिति है। इसलिए भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, यही हमारे शास्त्र हमें बारंबार बता रहे हैं और शास्त्रों के इन्हीं श्लोकों पर चर्चा जारी रहेगी हमारी। सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं विश्राम लेता है। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत

अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को। हेलो, और ये कहते हैं कि अब मई का महीना है जो बिल्कुल टाइम टाइम फिश हो चुका है, यानी कि ये भी निकल गया, जून और जुलाई रह गया, इन दोनों को भी किसी तरह से देख लेंगे। गर्मी के दिन मतलब सावधानी बरतने वाले दिन ये होते हैं। ज्यादा पानी पीना, ये आप सभी लोगों को, सब लोग कहते ही हैं कि साहब ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, ये वो वाले दिन है, घर के अंदर रहने वाले दिन है। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ये आपको बाहर जाना है, ये हम आपको बाहर बता। हम यहां पर स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं, स्टूडियो के अंदर लेकर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर शुरू होने वाला है आकाशवाणी रेनबो पर। रेडियो पर जानकारी देने के लिए, रेडियो पर आपको गीत सुनवाने के लिए यहां पर स्टूडियो के अंदर बैठा हूं मैं, मनीष आजाद, आपका दोस्त जिसे आप प्यार से रेडियो वाला कहते हैं। तो फिर वड़कम वड़कम वड़कम आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत प्यार।
1: सुनो एक थी कांच की गुड़िया,
0: यही प्यार आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी बता सकते हैं, उनको मैसेज करके बता सकते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अगर उनको लगता है कि काम की जानकारी यहां मिलती है तो आप उनको बताइए 9868107070 पर शुरू हो जाइए, ठीक है ना। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

सुबह सुबह अगर आपको आपको ऐसे अगर गला थोड़ा सा अगर साफ करना है तो जिस तरह से गीत चलते रहते हैं उनके पीछे पीछे अगर आप थोड़ा सा अलाप लेना शुरू कर देंगे तो भी आप थोड़े थोड़े से सिंगर मेरी तरह बन जाएंगे। चलिए अब आज क्या कुछ रहेगा खास, क्योंकि 30 मई की तारीख इतिहास के पन्नों पर बहुत जबरदस्त लिखी हुई है साहब। ये इतिहास क्या कहता है आपसे, ये बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि आज का खास दिवस क्या है, आज किस राज्य की स्थापना हुई थी, ये सब हम जानेंगे। इसके साथ साथ क्या है कुछ खास व्यक्ति हमारे जो इस धरती पर आए और अलविदा कह के गए, किनके साथ आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और सबसे बड़ी खास बात जो आकाशवाणी की श्रृंखला जो चल रही है उसका आज कौन सा एपिसोड आप सुनेंगे, क्या उसके अंदर जानकारी होगी, भाई ये सब तो आपको हमारे साथ रहकर ही पता चलेगा ना। तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आकाशवाणी रेनबो पर। मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला। तो फिर सुनते रहिए, महकते रहिए और इस महक को और भी आगे बिखेरते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। भारत के प्रसारण इतिहास में 1 अप्रैल 1976 का दिन एक नए युग का साक्षी बना, जब टेलीविजन सेवाओं को औपचारिक रूप से आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। इसी ऐतिहासिक विभाजन के साथ दूरदर्शन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में अस्तित्व में आया। इस बदलाव के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विस्तार करने और नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिला। शुरुआती दौर में टेलीविजन समाचार सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आकाशवाणी का तकनीकी और संपादकीय सहयोग मिलता रहा। वर्ष 1959 में आकाशवाणी के एक छोटे से प्रयोगात्मक स्टूडियो से शुरू हुआ सफर 1976 तक आते आते एक सशक्त और प्रभावशाली राष्ट्रीय पहचान में बदल गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हमने कहा बोली थी, हमने जय बोली थी ना कि जय, हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं भाई साहब, जय वाली श्रृंखला के अंदर में बहुत काम की बात सुनने को मिलेगी तुम्हें। 90 साल कम ना होते भाई साहब। हाँ, अब इससे कम नहीं होते तो इसके साथ साथ आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि जिस तरह से धीरे धीरे आकाशवाणी आपको नई नई बातें रोजाना, आपके जानकारी जो है उसके अंदर जितना भी बढ़ोतरी होती है वो आप देखते रहते हैं। इसलिए 24 घंटे का जो चैनल है ना, आपको लगातार जानकारी के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी करता रहता है। अब 30 मई का इतिहास है, 30 मई के इतिहास के अंदर कुछ ना कुछ तो रोज ना घट ही रहा है, घटेगा भी, क्योंकि इतिहास बनेगा कैसे। तो इतिहास बनाने के लिए हम आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों पर आखिर 30 मई को लिखा क्या है। हम बात करते हैं 1498 की, 30 मई की, जब कोलंबस को तीसरी बार 6 जहाज के साथ अमेरिका की यात्रा पर वो निकला था। 1539 की बात करते हैं, जब स्पेन के हर्नाल्डो डी सोटो ने फ्लोरिडा की खोज की थी। आगे लेके चलते हैं, जब आप बात करते हैं

आज 30 मई की, तो 30 मई की जो तारीख है ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि उदंत मार्तंड पहली हिंदी समाचार की शुरुआत जो है वो 1826 में 30 मई को हुई थी। 1919 की बात करते हैं, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो सर की उपाधि उन्हें दी गई थी उन्हें वापस की। 1922 के अंदर अगर हम देखते हैं, वॉशिंगटन डीसी ने लिंकन स्मारक समर्पित किया था। 1949 की बात करते हैं, जब पूर्वी जर्मन संविधान को 1949 में माना गया 30 मई। 1987 की बात करते हैं, गोवा के अंदर सुनने वाले जितने भी हैं या जो हमारे भारत में रहते हैं और जो गोवा उनका होम टाउन है, तो आज वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि गोवा 1987 में देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। 1996 की बात करते हैं, जब मात्र 6 वर्ष बालक गेधुन चोकी नाइया को नया पंचेन लामा चुना गया। 2012 की वो तारीख थी जब भारत के विश्वनाथ आनंद ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन वो बने थे। क्रिकेट आप सभी लोग जानते हैं, तो स्टार बल्लेबाज एलिस्टर कुक 2015 में इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो साहब, इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, आप भी रोजाना इतिहास क्या लिख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि अच्छा अच्छा लिखते रहेंगे, अच्छा अच्छा होता रहेगा, और जब अच्छा अच्छा होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि उस तारीख को ऐसा हुआ था, तो कैसा हुआ था ये आप बता सकते हैं, है ना, ठीक रहेगा, क्योंकि बताने की जो बारी है वो आप ही की होगी।

0: Royce. Rap.
1: जिस तरह से रोजाना कुछ न कुछ नया इतिहास बनता है, इसी तरह से आज की जो तारीख है, इस तारीख को जन्मे लोग जो धरती पर आए और अमिट छाप छोड़कर गए, लोगों के दिलों पर अपना नाम लिख कर गए, ऐसे ही नामों के अंदर जिनकी आज जयंती है, इनका नाम पंडित देवव्रत चौधरी। और कहते हैं कि सितार की दुनिया के अंदर बड़ा नाम जिनका नाम उस्ताद विलायत खान साहब के साथ, पंडित रविशंकर जी के साथ, पंडित निखिल बनर्जी के साथ, ऐसे लोगों के साथ नाम उनका शुमार किया जाता है। आज ही की तारीख को वो जन्मे, आज उनकी जयंती है। और साथ साथ में कहते हैं कि संगीत के सीनिया घराना जो जयपुर से संबंधित है, वहां से संबंधित रखते हैं। और भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र के अंदर शानदार उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। जयपुर के सेनिया संगीत घराने से, जिन्हें कहते हैं कि तानसेन परिवार के वंशजों ने शुरू किया था, जिन्हें रागों की शुद्धता और संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। देवू चौधरी जी शिक्षक और लेखक भी थे, उन्होंने 6 पुस्तकें और नए कितने राग भी बनाए थे। कहते हैं कि मात्र 4 साल की उम्र से ही उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने एक शो के दौरान में उनका इंटरव्यू कर चुका हूं। आज उनकी जयंती है और हम आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से उन्हें शत शत नमन करते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं, लेकिन हम कभी कभी उनको ऐसे अच्छा हाँ इन्होंने काम किया, लेकिन अगर आप देखेंगे जो फिल्म आई जितनी, वचन, घराना, धूल का फूल, दादी माँ, मैं सुंदर हूँ, संतान, पतंगा, दो कलियाँ, राजा और रंक और फिरकी वाली, एक ही रास्ता, इस तरह की फिल्में लिखने वाले, आज उनका नाम पंडित मुखराम शर्मा, आज इनकी भी जयंती है। और हम कहते हैं कि मेरठ जैसे शहर से निकलकर बॉम्बे पहुंचे और उसके बाद संवाद लेखन में, कथा लेखन में, पटकथा लेखन के अंदर बहुत बड़ा नाम किया। कहा जाता है कि उनके जो अगली फिल्म उसकी कौन सी है, उसके लिए फिल्म जो वितरक हैं उनके घर लगातार, घर के चक्कर लगाया करते थे, उनके घर लगातार आया जाया करते थे, फोन कर करके पूछा करते थे अगली फिल्म कौन सी है, किसके साथ में है। और उस समय कहते थे कि पंडित मुखराम जी का जो जवाब होता था, किसी भी फिल्म के अधिकार रातों रात बिकवाने की गारंटी हुआ करता था। वे जो लिख रहे होते थे उसका ट्रैक भी रखने के लिए जो उनके वितरक जो वहां पर होते थे, फिल्म वितरक निर्माता, उनके घर के नियमित इसीलिए चक्कर लगाते थे कि ताकि उनको अपनी पसंद के निर्माता और निर्देशकों को वो अपनी कहानियां बेचने का विशेष अधिकार उनको मिल जाए, उनको बोलेंगे हाँ जी अगली फिल्म कौन सी आने वाली है। तो इसलिए कहते हैं कि जब लोग काम करते हैं, और यही कारण है कि फिल्म फेयर पुरस्कार उनको एक बार नहीं, 3-3 बार से उनको नवाजा गया। इसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। अलग अलग देखेंगे तो आप 5,000 रुपए की वह धनराशि जो साधना फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार द्वारा प्राप्त की थी, एक कन्या पाठशाला को उन्होंने वहां पर उस समय वो दान कर दी थी।

हाँ जी, 30 मई की जो तारीख है, 30 मई की तारीख, आपको लग रहा होगा 30 मई की तारीख के अंदर भाई हमारे घर में उनका वाला जन्मदिन, हमारे उनके रिश्तेदारों के अंदर आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी, आज उन्होंने ये किया था, तो रोजाना कुछ ना कुछ तो है ही। तो 30 मई की तारीख हम आपको बता दें कि 30 मई की तारीख जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने, कहते हैं कि शुक्ला जी ने जो पहला 1826 के अंदर प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो था वो आरंभ किया था, मतलब भारत में कहते हैं कि

पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर जी ने की थी, वो भी बंगाल से की थी। उस समय का जो कहते हैं कि कितनी परेशानियां थी और कितने उन्होंने कहा 40 साल लग गए थे इसको शुरुआत करने के लिए, कई बार उन्होंने इसकी कोशिश की कि वो पहले से शुरू हो जाए, क्योंकि उससे पहले अंग्रेजी समाचार पत्रों का बोलबाला था। एक लंबे समय के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हिंदी पत्रकारिता का इतना लंबा सफर तय करेगी। 200 साल हो चुके हैं आज, 200 साल होने पर पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगहों पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। लगातार 200 वर्षों के अंदर हिंदी अखबारों और समाचार पत्रों के अंदर आप देखेंगे कई सारी चीजें हैं जो बदलाव के रूप में आ चुकी है। कहा जाता है कि उस दौर को याद कीजिए जब खुद ही छापा जाता था और मार्केट में जाकर लोगों को खुद ही एक एक समाचार पत्र दिया जाता था ताकि वो ये पढ़ सकें कि आसपास जो आपके घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में पढ़ने को मिले। क्योंकि जो घटना कहीं हुई है शायद वो आपके पास ना पहुंचे, लेकिन उसका एक कारण ये जरूर है कि अगर वो किसी समाचार पत्र के अंदर छपी है तो वो जरूरी हो जाती है। आज भी आपके घरों के अंदर आपके दादाजी, आपके मम्मी पापा, आपके भाई, कोई जानने वाले जरूर अखबार पढ़ते होंगे। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कुछ समाचार चैनलों को उस समय पर जरूर देखते होंगे, जिससे ये अंदाजा लग से कि भाई जो खबर आने वाली है वो खबर हम पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो सारे दिन की जो खबर क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो सब हमें पता लग जाएगा। जो 30 मई की तारीख को आप याद रखें, हिंदी पत्रकारिता दिवस। आगे क्या कुछ और खास होने वाला है, किसके साथ आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और किस राज्य का वही स्थापना दिवस है ये भी आपको बताएंगे। तो आज आप अपनी तारीख कैसे अपने आप में लिखेंगे सुनहरे अक्षरों के अंदर, ये आपको पता लगेगा। लेकिन छोटा सा गाना सुन लेते, कुछ कुछ काम की बातें आपके लिए लगातार हम दे ही रहे हैं, ये भी सुनते रहिए साथ साथ में आनंद उठाते रहिए। क्यों, ठीक है जी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: जितने तेज मेरे हाथ चलते हैं ना, इससे तो सिस्टम तो बहुत मुझसे पीछे चलता है, लेकिन फिर भी आगे तो चलना पड़ेगा। आगे चलते चलते हम आपको ये बता दें कि आज की तारीख यानी कि 30 मई की तारीख, लेकिन हम 1987 की बात करें जब 25वां पूर्ण राज्य बना गोवा। अब गोवा की बात करें तो आप सभी लोगों को लगता है कि भाई छुट्टियां मनाने के लिए आप गोवा जाएंगे, भाई छुट्टियां पे चलो भाई समुद्र में थोड़ा सा नहाकर आते हैं, गोवा की तरफ बढ़ते हैं। तो गोवा जो है भारतीय प्रायद्वीप के हम देखेंगे तो वो पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर आप देखोगे दो चारों तरफ से अगर आप देखें तो गोवा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र राज्य, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक राज्य, पश्चिम के अंदर अगर आप देखेंगे तो अरब सागर से घिरा हुआ है। समुद्र के अंदर देखते हैं ना, गोवा में कभी जाते हैं तो बहुत सारे आपको बीच वहां पे देखने को मिलते हैं कि भाई वहां पे गए थे कि अच्छा वो उसमें गए थे, अच्छा वहां गए थे, तो साउथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनों तरफ से बातें होती हैं। अब अगर हम गोवा की बात करें तो सबसे बड़ी खास जो इसके अंदर बात आती है कि गोवा का जो नाम है अलग अलग रहा पहले भी। तो गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपकपट्टनम, गोपपुरी, गोमांतक आदि कई नामों से ये विख्यात रहा। बहुत इसके देखिए गोवा हर किसी शहर का, हर किसी राज्य का अलग अलग जो इसका इतिहास है बहुत लंबा होता है और ऐतिहासिक जो वो कई सारी ऐसी परंपराएं भी रहती हैं जो लगातार चलती रहती हैं। गोवा जो है पश्चिमी समुद्र तट पर अगर आप देखेंगे जो स्थित है और भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती है जो 1961 से भारत का अभिन्न अंग जो बन गई थी और पुर्तगालियों ने पहली बार 1556 ईस्वी में अगर देखेंगे तो गोवा के अंदर छापा खाना जो है वो स्थापित किया था। कहते हैं कि वास्को द गामा एक पुर्तगाली नाविक थे और उनके द्वारा की गई जो भारत की यात्राओं में पश्चिम यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग जो है खोल दिए गए थे। उन्होंने विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की थी और कहते हैं कि यूरोपीय खोज युग के उस दौरान में सफल खोजकर्ताओं में से एक थे। यह यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों के कमांडर थे। वास्को द गामा ने पुर्तगाल को कहते हैं कि उस समय एक विश्व शक्ति बनाने में उन्होंने मदद की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग नामों से भी जाना जाता था तो जो उस समय आप अरब के जो मध्ययुगीन उस समय यात्री हुआ करते थे उसे कोई चंद्रपुर भी कहता था, कोई इसे चंदौर भी कहता था, अलग अलग नामों से उसको नाम दिया जाता था। कुछ पुर्तगालियों ने थे उसे गोवा रखा तो वह आज का छोटा समुद्र तटीय शहर जिसको गोवेल्हा भी उसको भी कहा गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम। भाई हम सभी लोगों को जो भी गोवा जो हमारा जो शहर है उससे संबंधित हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के आपके स्थापना दिवस के लिए, है ना। अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे, अच्छे अच्छे आप गाने सुनते रहें, जानकारी लेते रहें, और आपको क्या चाहिए?
1: कुछ भी नहीं चाहिए मनीष भाई, बस कुछ भी नहीं है, गाना सुना दो बस।
0: लो जी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: क्या गजब की एनर्जी भाई साहब दलेर साहब के पास है, क्या जबरदस्त वो मतलब करते हैं यार। देखो इसके साथ साथ में बीच बीच में कितनी मुर्गियां यूज करते हैं वो, कभी कुछ कभी गाने के अंदर कभी कुछ, ऐसा ही उनको जवाब फिर सुनिधि चौहान भी दे रही हैं। चलिए जी बहुत अच्छा गीत और करले भी डांस वांस, अगर आप डांस आप भी ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं जानकारी के साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा नाच भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप नाचने पर और भी अपने आप को हंसाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका हैप्पी वाला बर्थडे किन के साथ में आता है सुनकर आप भी
1: रे बाबा क्या बोला रही
0: जी, परेश रावल के साथ आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं कीर्ति कुल्हारी के साथ में। अब वो उनकी मतलब कहते हैं ना भाई बहुत सारी अब हीरोइन है मेरे को, तो उनकी एक भी फिल्म ऐसे मुझे याद नहीं आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जिनका हैप्पी वाला बर्थडे और है, कृष्णा अभिषेक, अरे मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है ना, कितने अच्छा वो मतलब वो एक्ट करते हैं, कितना अच्छा और मिमिक्री करते हैं लोगों की, और जगह दादा ने उनको कहा भाई यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा करता है। ठीक है, तो आप अपना हैप्पी वाला जो बर्थडे है इन लोगों के साथ में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को आज के आपके जन्मदिन की, आज आपके एनिवर्सरी की, कोई गिफ्ट लिया है, कोई मकान लिया है, इस सब की बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए क्योंकि जिंदगी आगे निकल रही है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एआईआरएफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप।

कलाइयों को चिट्टियां रखना हो या फिर अपने चेहरे को चमकीला, उसके लिए बहुत जरूरी है पानी पीना, हाइड्रेट रखना। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो चेहरा भी ग्लो करेगा और साथ ही आपका जो मेलानिन प्रोडक्शंस है वो भी कम होंगे और उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो फेयर दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही सनस्क्रीन जरूर लगाइए। और पता है, सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि केवल गर्मी के मौसम में जब बाहर जा रहे हैं, धूप दिख रही है तभी लगाएं, बल्कि अगर बादल दिख रहे हैं आपको और गर्मियों का मौसम है या कम सूरज की किरणें हैं, यूवी रेज तब भी आपकी स्किन तक पहुंच जाती है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना घर से बाहर निकलते वक्त एक बहुत ही मस्त थिंग है। इसके साथ ही पानी पीना, फ्रूट्स खाना और गर्मी के मौसम में तला भुना स्पाइसी खाना कम खाना, ये बहुत बहुत जरूरी है। हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है और साथ ही मेरी जो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो बचपन से देख रही हूँ, वो भी यही कहती है कि इस मौसम में जो हार्ड खाना है ना, मतलब जो तला भुना खाना है, मसालेदार खाना है, वो आपको बहुत देर डाइजेस्ट होता है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। जो गर्मियों का मौसम है ना, ये तो वाटरमेलन का मौसम है। इसमें हम वाटरमेलन, मस्कमेलन, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, आम पना पीजिए, स्मूदीज पीजिए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कीजिए ना जो घर पर आप कर सकते हैं खाना बनाने को लेकर। और देखिए, खुद को एक चैलेंज देके देखिए कि जीरो ऑयल कुकिंग हम कैसे कर सकते हैं और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की सेहत सुधर जाएगी। वैसे दिल्ली की गर्मी ने तो चिट्टियां कलाइयां रहने ही कहा दी हम लड़कियों की। टेम्परेचर जो है वो 45 पार पहुंच गया और इतनी भयंकर गर्मी में जिसका रंग का मतलब ज़्यादा फेयर था वो भी डार्क होने लगा। पर देखिए, दोनों ही रंग कितने खूबसूरत हैं, पर आपको अपना ध्यान तो रखना ही होता है ना। वैसे आपको बता दूं कि जो मौसम है वो अब कुछ दिन तक अलग अपनी करवट बदल रहा है और धूप, तेज धूप आपको नहीं दिखेगी। आपको कम जो बारिश का अलर्ट भी जारी हो गया है, 31 मई तक आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको पता ही है कि थर्सडे को जो शाम को बारिश हुई थी उससे लोगों को भीषण गर्मी और शुक्रवार तक कुछ राहत मिली थी। तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट भी दर्ज हुई, जो कि पहले 28 डिग्री था वो घटकर 25 डिग्री रह गया, जो तापमान 45 था वो घटकर 37 पर आ गया। तो तापमान तो धीमे धीमे कम हो ही रहा है और बारिश ने भी कहा है कि मौसम विभाग ने भी कहा है कि बारिश आएगी और बारिश ने भी कहा है कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मॉनसून में इस बार बारिश कम होगी, पहले से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अब देखिए तापमान कैसा रहता है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि दो दिन अपना ध्यान रखिए क्योंकि तेज हवाएं चलने का और बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं ऋचा आपके साथ।

हे यू, जी हाँ बिल्कुल। आप ही अगर इस वक्त उस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो, और गाड़ी चलाते हुए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हुए आपको कहीं भी जाम मिल रहा है या ट्रैफिक स्मूथ दिख रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। आपको अपना व्हाट्सएप खोलना है, उस पर 9868107070 इस नंबर को पहले सेव कर लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप से आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक जाम है, कहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ है, या आज का मौसम कैसा है आपके यहाँ पर। भाई मैंने तो आपको बता दिया कि आज 2 दिन तक दिल्ली में तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आंधी का और बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आपका कहीं प्लान है, कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने या कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बारिश का सामना करना पड़े या आंधी आ जाए वहां पर। तो अम्ब्रेला अपने साथ रख लीजिएगा और अपनी अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि एडमिशन की तारीख जो है वो डिसाइड कर ली गई है और आप 16 मई से रजिस्ट्रेशन बिगिन हो गए थे। 7 जून तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, यानी 16 मई से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जून तक रजिस्ट्रेशन करने की डेट दी गई है। इसके लिए pgadmission.uod.ac.in यहां जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में, और इसके बाद फिर आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा। साथ ही इसके लिए एक फीस भी डिसाइड की गई है, जो कि रिजर्व कैटेगरीज के हिसाब से फीस डिसाइड की गई है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको कितना स्कोर करना है, कट ऑफ कितनी जाएगी, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, pgadmission.uod.ac.in। तो ऐसी ही काम की बातें आपको मिलती हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। बने रहिए ऋचा के साथ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं आप।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और बहुत सारी काम की खबरें आपके लेकर आती हूँ मैं इस कार्यक्रम में, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और एक बहुत ही ज़रूरी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि ट्वेल्थ में उन्हें जितना स्कोर करना चाहिए था उतना स्कोर वो नहीं कर पाए हैं। यानी एग्ज़ाम के बाद जब पेपर का एवेल्यूएशन घर पर आकर किया तो लगा कि आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको लगा कि आप उस नंबर तक के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने ये कहा है कि जो आंसर शीट्स हैं उनके सत्यापन और पूर्व मूल्यांकन के लिए जो भी परीक्षा के बाद जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक पोर्टल चालू किया गया है जो 1 जून से चालू हो जाएगा। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं, प्रश्न या जिज्ञासा आपने पूछ सकते हैं। सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800118004 1800118004। इसके अलावा मेल आईडी भी है जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और यहां पर आप चाहें तो जो अपनी री इवेल्युएट करवा सकते की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, साथ ही उसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने मार्क्स को। और ये पूरी जो प्रोसेस है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहेगी, तो आपको आपके मार्क्स के बारे में कोई भी जो शक है या जो डाउट है आपके मन में कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप री इवेल्युएशन के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप रीचेकिंग के रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये जो पोर्टल है ये बहुत जल्द वर्किंग हो जाएगा 1 जून से, तो यानी अब से कुछ ही दिनों बाद, यानी 2 दिन बाद ये पोर्टल जो है वो शुरू हो जाएगा, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पर अपनी क्वेरी ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और बिल्कुल टेंशन

मैं हूं ऋचा आपके साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर की जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें सर्च करना है रेनबो दिल्ली और उसके बाद आप इस कार्यक्रम को बड़े ही आराम से लाइव सुन सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है तो आप दे सकते हैं 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं, ट्रैफिक का अपडेट भी बता सकते हैं। वैसे जानकारी तो हम तक पहुंचा ही रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली को अक्सर कहा जाता है कि बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी शहर अपने आप तो बन नहीं जाता, उसमें रहने वाले लोगों के से ही वो अच्छा या बुरा जो ऐसा भी है बनता है। वैसे में हम सबका प्रयास इस शहर को और भी बेहतरीन बना सकता है। आप जानते हैं कि हम दिल्ली वाले अपनी दिल्ली से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, और इतनी हरी भरी प्यारी सी हमारी ये जो दिल्ली है, ये दरअसल हम सबका प्यार है, हम सबका दिल बसता है यहाँ पर। और जब दिल्ली के बारे में कोई कुछ भी कहता है ना तो मुझे बड़ा खराब लगता है ना। बीइंग अ दिल्ली वाले हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा शहर हमेशा क्लीन रहे। इसके लिए साफ सफाई का ध्यान तो आपको रखना ही है कि कहीं भी यहां वहां कूड़ा नहीं फेंकना है, पोल्यूशन होने से नहीं आपको रोकना है कि कहीं भी पोल्यूशन ना हो। अपनी गाड़ियों का जो पोल्यूशन है वो टाइम टाइम पे आपको करवाते रहना है, साथ ही जो सरकार है वो भी इसके लिए समय समय पर प्रयास करती रहती है। जैसे कि दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई टेक्निक लेकर आई है। सरकार ने डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च करने वाली

0: है। और ये जो पोर्टल है ये दिल्ली के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो और एनवायरमेंट से जुड़े नियमों का वो पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI रियल टाइम का जो से विश्लेषण होगा, ये अपने आप चलने वाली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि क्या ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो सारे पैरामीटर्स हैं जो एनवायरनमेंट को सेव करते हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और ऐसे में कंस्ट्रक्शन टाइम टाइम पर होते रहते हैं और उस कंस्ट्रक्शन से अब धूल उड़ती है तो कहीं ना कहीं वही हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है। तो इसके लिए सरकार की एक बहुत ही अच्छी कोशिश है जिससे कि आपको हमें पता लगेगा ये जो पोर्टल है ये प्रदूषण के स्तर पर कई सारे मानकों में जो भी बदलाव होगा वो उससे अलर्ट करेगा, साथ ही पोल्यूशन नियंत्रण के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का सशक्त माध्यम भी साबित होने वाला है। तो जो AQI है इससे बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा, साथ ही इसकी जो मॉनिटरिंग है वो 24/7 की जाएगी ताकि अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके और उसे मैनेज किया जा सके ताकि हमारे दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल साफ क्लीन रहे और हम लोगों का जो AQI है वो मेंटेन रहे। लेकिन इसके लिए प्रयास आपको भी करना है। जिन गाड़ियों से आप अभी बैठकर अपने ऑफिस जा रहे हैं, जिन गाड़ियों से आप ऑफिस से अपने घर आते हैं, जिन्हें लेकर आप निकल पड़ते हैं कहीं भी घूमने फिरने जो आपको हर जगह पहुंचाती हैं, उन गाड़ियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। इसलिए टाइम टाइम पर इनका पोल्यूशन करवाना, इसलिए टाइम टाइम पर इनका ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि ये हमारे दिल्ली की हवा को पोल्यूटेड ना करें। ट्रैफिक रूल्स का पालन करते चलिए और बने रहिए ऋचा के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।
1: हाय।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है गॉड।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ ऋचा आपके साथ। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

एक बहुत ही बढ़िया गाना है ना, मजा आया ना। तो ऐसे ही मजेदार गाने यानी एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का जो परफेक्ट डोज है वो आपको मिलता है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के इस कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं 9868107070 पर। और अब एक ऐसी बात, यूं तो जेंजी कहता है कि हम बड़े ही सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बहुत पा लेते हैं, और फिर उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो लोग बहुत बहुत अच्छा कर जाते हैं, है ना। लेकिन एक कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके दिल को कहीं ना दुखाती हैं, आपको दुख होता है उन्हें सुनकर, ना अच्छा नहीं लगता आपको। और उनमें से एक खबर यह है कि जो आजकल अचानक से दहेज की जो खबरें आने लगी हैं ना, वो बड़ा डराती हैं हमें। और हमें लगता है कि जब हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, जब हम इतने सारे फील्ड्स में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम पुरानी कुरीतियों को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। हम आज भी शादी में लेने वाले जो गिफ्ट्स हैं उनसे मना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ी लिखी होने के बाद भी लड़कियां ये अपनी फैमिली से क्यों नहीं कह पाती कि जहां पर पैसा इंक्लूड है वहां पर मुझे शादी नहीं करनी। लड़के ये क्यों नहीं कह पाते कि मैं हूं ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, ऐसे में किसी और की फैमिली से पैसा लेने की क्या जरूरत है। एक फैमिली जो अपनी बेटी की शादी करती है कर्ज लेके, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर, और उसके बाद फिर बाद में उन्हें पता लगे कि दहेज के लिए उनकी बेटी को और सताया जा रहा है, उसकी जान ली जा रही है, तो बताइए ये जरा कहाँ तक ठीक है। और मानिए या मत मानिए, इस दहेज प्रथा को हवा देने वाले आप और हम लोग ही हैं। आप मुझे खुद बताइए, अपने दिल पे हाथ रखे, कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे काबिल होने के बाद भी ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि अगर हमारी शादी में पैसा इंक्लूड होगा तो हम शादी नहीं करेंगे। आप में से ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी काबिल होने के बाद भी अपने सीने पे हाथ रखे कह सकती हैं कि पापा मुझे आपका दिया हुआ केवल आशीर्वाद चाहिए, आप मेरी शादी बिना पैसा इन्वॉल्व किए भी कर सकते हैं। आप में से कितने ऐसे फादर्स हैं जो अपने बच्चों से ये कह सकते हैं कि पैसा इन्वॉल्व होगा तो शादी नहीं होगी, हम तुम्हें जितना पैसा तुम्हारे लिए सेव किया है उसकी तुम्हें FD दे सकते हैं, उसका तुम्हें घर दे सकते हैं, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। एक फैमिली अपनी अपने बच्चों से ये क्यों नहीं कह पा रही है कि ये जो पैसा है ये तुम्हारी शादी के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए हम सेव करना चाहते हैं। और जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना बड़ा चेंज आएगा सोसाइटी में। आज भी दहेज के लड़कियां मर रही हैं, और शायद ये सबसे बड़ी शेम की बात है हम सबके लिए, हम जेंजीज के लिए, हम मिलेनियल्स के लिए, हम सभी के लिए। पहले होता होगा बहुत कुछ जो अब बदल गया है, जो अब सुधर गया है। पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने का अधिकार मिला। पहले बाल विवाह था, उसके बाद वो भी चीज़ ठीक हुई। लेकिन ये दहेज प्रथा से हम क्यों नहीं उभर पा रहे हैं ना, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको समझ आए तो ज़रा मुझे भी समझाएं। लेकिन एक बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि लड़के और लड़कियों से शादी करते हैं, उन्हें अपने परिवार में शामिल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेइज्जती बंद नहीं होती। उनके दहेज न देने पर उनकी फैमिली को भिखारी कहा जाता है, उन्हें खराब कहा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा और कहना पड़ा कि बहुएं घर की मेड्स नहीं हैं। आज भी बहुओं को फैमिली में अपनाया नहीं जाता, ऐसी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। जरा सोच कर देखिए कि किस तरफ जा रहा है हमारा समाज, और समाज आपसे और हमसे बनता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये बात आपके कानों तक पहुंच रही है, अगर आप इसे सुन पा रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं ना जिनकी शादी हो गई है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अभी शादी अगर नहीं हुई है आपकी और

आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, याद रखें अगर पैसा इन्वॉल्व होगा तो ये शादी नहीं होगी, तो ये रिश्ता नहीं होगा। याद रखिए कि आपके पेरेंट्स ने जो कमाया है ना, जो अर्न किया है, वो उनकी खुद की पूंजी है। आप कमाइए, अर्न कीजिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए असेट बनाइए। और याद रखिए कि दहेज प्रथा बुरी थी, बुरी है और हमेशा बुरी रहेगी।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ रिचा आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके साथ ही आप ट्रैफिक अपडेट मुझे दे सकते हैं, मौसम का हाल सुना सकते हैं, प्रोग्राम्स के बारे में फीडबैक दे सकते हैं 9868107070 पर। और मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत गाने, यानी कि परफेक्ट इंटरटेनमेंट मिलेगा आपको और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का एक परफेक्ट डोज है ये कार्यक्रम। तो चलिए सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना, दिल से निकल के आपके कानों तक पहुंचता हुआ और कानों से सीधे दिल तक पहुंचता हुआ। FM रेनबो, दिल से दिल तक।

काय दे से मोहब्बत कीजिए अपने एम से, अपनी मंजिल से, और जब उस मंजिल पर पहुंच जाएं तो जैसा कि मैंने कार्यक्रम में कहा था सुबह वाले, कि रुक जाएं और ठहर जाएं और सुकून की तलाश करें। खैर, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये एडमिशन का टाइम है और बहुत सारे बच्चे CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उन सभी में एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है कंसिस्टेंसी। यानी आप लगातार निरंतर एक ही समय पर जितनी भी देर के लिए पढ़ें वो बहुत ज़रूरी है, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं हूँ रिचा आपके साथ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप, और अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 21 जून को, तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि आपको इस एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो DTC की सभी बसों में आपको एब्सोल्युटली फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी, ताकि आप बड़ी आसानी से अपने सेंटर तक पहुंच सकें। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए करना क्या है, आपको अपना एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा उस एडमिट कार्ड को अपने साथ लेके चलना है, बस कंडक्टर को दिखाना है, और देखिए आप बड़े ही आराम से आप निशुल्क यात्रा कर सकते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी, है ना, बड़े ही आराम से आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं तो एक बार ज़रा बता दीजिए कि ट्रैफिक का

हाल क्या है ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके। अब वक्त ये भी कह रहा है, घड़ी की सुइयां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब मैं आपसे इजाजत ले लूं, क्योंकि समय हो गया है मेरे जाने का। तो मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और याद रखिए कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है, और जो मौसम है ना, कभी ठंड कभी गर्मी कभी इस तरीके का, इसमें तबीयत खराब होती है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, और बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: और मैं क्या जी, समय बिल्कुल बदल चुका है। ये समय जो है अब आपके लिए बैक टू बैक म्यूजिक यानी कि झमाझम, जिस तरह से बारिश होती है ना, इसी तरह से संगीत की बारिश होगी, जहां पर आपके पैर अपने आप डांस करने लग जाएंगे। तो इसे डांस करने के लिए साथ साथ में आप अपने जब पैर उठाएंगे तो आप एक अपने आप को फिर रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बीच में हम तड़का जो लगाएंगे ना साहब, ये जो तड़के होते हैं ना साहब, ये स्वाद ज्यादा दे देते हैं। तो इस स्वाद का जब तड़का लगेगा हमारे रेट्रो का, तो फिर आप अपने आप को और भी ज्यादा प्रफुल्लित महसूस करेंगे। अच्छा वाड़े ना वाला
1: दिला दे घर,
0: दिला देंगे,
1: दिला दे घर,
0: यस
1: बना दे घर,
0: बादशाह हाड़ी संधु।
2: ओ माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।
0: दिल के तराने, गाने नए पुराने का सेगमेंट शुरू हो चुका है 9 बजे से लेके 10 बजे तक, तो बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

हाँ जी, बोतल ले ली पानी की। पानी की बोतल, छाता और सर पर रखने के लिए कपड़ा। वैसे तो ज्यादातर जो है महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माता जो है रखती हैं, लेकिन अच्छा ही है इस समय गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए। अपना जितना आप सामान बाकी का कम कर देंगे ये रख लेंगे अच्छा रहेगा। दूसरा, सभी जगह पर सब लोग बोलते हैं इस समय नींबू पानी, शिकंजी, जो चीजें ठंडी, आपको छाछ, लस्सी, ये थोड़ा सा शरीर के अंदर ठंडा ठंडा रखेंगी। पानी की मात्रा, इस समय पानी की प्यास ज्यादा लगती है। हाँ, एक बात जो मैंने पर्सनली फील करी है, ठंडा ठंडा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, ये मैंने खुद माना है। नॉर्मल पानी या उसमें आधा थोड़ा सा ठंडा पानी, बाकी नॉर्मल पानी मिला के पियेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। गर्मी इस तरह से ही है। तो मौसम क्या कह रहा है साहब? मौसम कह रहा है इस समय जो मैक्सिमम टेम्परेचर है साहब, वो 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कम वाले की बात करें, जहां पर उमस है, तपती धूप है, पैर एकदम से फर्श पे रखते के साथ आई आई आई आई जल गया, वो 26 डिग्री सेल्सियस है। वो न्यूनतम वाली बात है। बहुत ही जरूरी हो, आपको लगता है कि नहीं साहब निकलना ही जरूरी है, तो एहतियात के तौर पर जो मैंने आपको बताया है निकलिए। वैसे बड़े बुजुर्गों की बात मानोगे, वो आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, करते रहिए और सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने। ये आपके पास गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है।

0: जमाने गाने नए पुराने FM रेनबो 102.6 पर।
1: निकल ले भाई, जरा साइड को सो जा मेरे भाई। ओ भाई भाई जरा, हाँ थोड़ा उधर को चलाओ भाई, मैं भी गाड़ी चला रही हूँ। भाई साहब आप थोड़ा सा देख के चलो, क्यों मेरी गाड़ी पीछे से आ रही है। तो हम क्या करें भाई साहब, ये जो बातें हैं ना भाई साहब, जब रोड पर आप चलते हैं आपको लगता है कि आप सबसे पहले आगे निकल जाएं। आप जैसे ही रेड लाइट छूटे आप सबसे पहले आगे निकल जाएं, कोई आपकी गाड़ी को पकड़ ही ना पाए, ट्रैफिक पुलिस वाले भी ना पकड़ पाए, क्योंकि अब तो चालान अपने आप ऑटोमेटिकली घर पहुंच जाते हैं। क्यों आप घर से निकलते लेट हैं, फिर उसके बाद जो रोड पर समझ रहे हो ना आप, एक दूसरे को आप हिंदी की कविता सुनाना शुरू कर देते हैं और फिर पहुंचते पहुंचते आपको लगता है कि सब जगह से भाई साहब मैं ही जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। इस समय आज मुझे बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है कि जो रजौरी गार्डन और ये मायपुरी वाला फ्लाईओवर है भाई साहब, ये आज जो लाइनें यहां पर दिख रही है ना, ये बिल्कुल यहां पर लाल लाल नहीं है, आज बिल्कुल लीली लीली है रही है। इसका मतलब ट्रैफिक बिल्कुल सही है। आप ट्रैफिक को देखेंगे तो चकाचक इस समय चल रहा है भाई साहब, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा जो है इस समय आपको ये क्या नाम है, मोहन नगर, ये दिख रहा है सामने, मोहन नगर पर आप देखेंगे तो साहब आपको मोहन नगर पर आपको इस समय ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि वो गाजियाबाद की तरफ से जब मुड़ते हैं तो वो थोड़ा सा लाल लाल यहां पर नजर आ रहा है। हाँ अगर इस समय आप ये सदर बाजार की तरफ से आ रहे हैं आर के आश्रम की तरफ, तो ये यहां पर क्योंकि ये वन वे है, दोनों तरफ से एक रोड है, तो एक तरफ से रोड की खुदाई हो रही, तो वहां पर इस समय ट्रैफिक का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है थोड़ी सी देर के लिए। ये आपका आ गया यहां से निकलने के बाद। ओके अगर आप आनंद पर्वत से जखीरा पुल की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी थोड़ा सा आपको ट्रैफिक का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, लेकिन जो चकाचक वाला रोड है भाई साहब इस समय, तो रोहिणी और उसके अंडरपास वाला रोड बिल्कुल ठीक। ओ ये महेंद्र पार्क वाली जो रेड लाइट है जहां पर ये अंडरपास है साहब, थोड़ी सी देर का वहां पे विलंब है, शायद एक सेकेंड थोड़ा सा जो हल्का सा जो दिख रहा है ना छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा समझ के चल रहे हैं भाई साहब को, वो टायर पंचर यहां से नजर आ रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप हाँ जी ये ठीक है, इस समय विकास मार्ग भी देखेंगे तो बिल्कुल चकाचक नजर आ रहा है। आप प्रीतिहार से लेकर यानी कि वो कड़कड़ डूमा वाला जो कोट कड़कड़ डूमा देखते हैं जहां से कड़कड़ मोड़ शुरू होता है वहां से लेकर बिल्कुल आईटी तक चकाटक चल रहा है भाई साहब, तो इस समय सरपट दौड़ते चले जाओ, लेकिन भाई साहब ट्रैफिक में थोड़ा सा अपना एस्केलेटर पर थोड़ा सा पैर कम दबाओ, क्योंकि आप अगर आप ज्यादा दबाएंगे कैसे करोगे, नैन बटक्का। दिल के तराने गाने नए पुराने के अंदर ये जो सेगमेंट है आपका 9 बजे से 10 बजे तक बैक टू बैक म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है। रेडियो पर आपको जो सुना रहे हैं मेरा नाम मनीष आजाद, प्यार से आप हमें रेडियो वाला कहते हैं।

मोर बनाते हैं। ये माल थोड़ा मवाली है, हर सेंटेंस में गाली है, ना बम बहना पटाखा है, ये लड़की पूरी दिवाली है। बूम।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

बुलाओगे तब मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल जाते जाते आपको ये बता दे कि अब प्रोग्राम आपके पास लेकर कौन आएगा। ज्योति ऑलरेडी स्टूडियो के अंदर आ चुकी है लेकर प्रोग्राम आपके लिए वेस्टर्न म्यूजिक मैथराज म्यूजिकार, जहां पर भी आपको कुछ रेट्रो वाले सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। उसके बाद बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आएंगे, आशुतोष भारद्वाज आपके साथ में होंगे। फिर उसके बाद साइमा आएंगी लेकर प्रोग्राम आशियाना। उसके बाद बबीता त्रिपाठी आप लोगों के साथ में होंगी, प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर। आपको पता ना कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा वाला, तो जरूर सुनिएगा। इसके बाद प्रोग्राम होगा, बबीता त्रिपाठी आपके साथ दोबारा होंगी, प्रोग्राम होगा सिटी लाइट। इसके बाद में वीर दमन सिंह यानी कि मैसेज मसाला मिक्स, वैसे तो वहां से मनीष होता है लेकिन ये मैसेज मसाला मिक्स ही बोलते हैं ना, ठीक है चलेगा काम। सुहासिनी आपके साथ में होंगी, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, सैटरडे सिजलर्स प्रोग्राम होगा। इसके साथ नविता कुमारी आपकी याद आती रहे और मैं इंगे को जाती रहे। तो बस अब आपका और मेरा साथ यहीं तक था साहब, लेकिन ये जो गाने आपके लिए आ रहे हैं ना साहब, ये बहुत कमाल के गाने हैं, ठीक है। तो सुनते रहिए, महसूस कीजिए, क्योंकि महसूस करने से महक दूर तक जाती है।

0: सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: साझा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders...
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit.
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिहार ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एग्जैक्टली बिल्कुल 11:05 और 45 सेकेंड हो चुके हैं, और बिल्कुल जब ये घड़ी में वक्त होता है ना तो

क्या होता है, वक्त होता है बॉलीवुड ट्रेल्स का, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ कनेक्ट हो चुका है और शनिवार के इस सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मौसम में थोड़ी ठंडक है, हवा में थोड़ी सी नमी महसूस हो रही है, लेकिन आपको खास ख्याल रखना है, गर्मी भी निरंतर बनी हुई है, इसलिए बहुत खास ख्याल रखना है। और बॉलीवुड की खबरें आपके यहाँ पर इंतजार करें तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे और हमारे साथ ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। फिलहाल अमेजिंग ट्रैक के साथ शुरू कर रहा हूँ और आज बहुत तमाम बातें बॉलीवुड की बताएंगे, क्या कुछ चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं बॉलीवुड में और कई सारी फिल्म्स भी आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: close to me, or is it our destiny?
1: वैसे अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो डेस्टिनी तक बिल्कुल आप पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों ज़बरदस्त बिल्कुल एक चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत एक बड़ी घटना है और सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया भैया, ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन दिलचस्प एक सोशल मीडिया घटना एक बिल्कुल सभी के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अचानक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई बड़े सितारों को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शाहरुख खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन, जानवी कपूर, अनन्या पांडे सहित करीबी दोस्तों और सहयोगियों को अनफॉलो कर दिया है। सो कई लोग सोच रहे हैं ये क्या हो गया भाई, अचानक से कैसे इनके रिश्तों में खटास पैदा हो गई, कैसे मतभेद पैदा हो गया। लेकिन इन्हीं अटकलों को बिल्कुल उन्होंने शांत कर दिया और बिल्कुल करण जौहर ने खुद एक स्टोरी अपनी बनाई और उसमें

उन्होंने बताया है कि वो किसी विवाद या नाराजगी का मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने डिजिटल डिटॉक्स किया है और बस ये इसी का हिस्सा है। और वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनका जो समय है, उनकी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और दिलचस्प बात यह कि इस छोटे से सोशल मीडिया बदलाव ने पूरे फिल्म जगत में एक चर्चा छेड़ दी है। लेकिन करण ने साफ कर दिया है कि उन्होंने और बिल्कुल बॉलीवुड सितारों के बीच कोई भी ऐसी मतभेद नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और फैंस को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी फिलहाल बॉलीवुड में किसी नए विवाद की तो नहीं, बट करण जौहर के जो डिजिटल डिटॉक्स है ना, उसकी चर्चा हो रही है। सो अगर आप भी ये ऐसा डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, और अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको अपने लिए टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा फ्री टाइम बिल्कुल अपने लिए देना होगा, और वो तभी मिल पाएगा जब आप डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकल के अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है, और अपने लिए टाइम निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है हमेशा हर किसी के लिए। फिलहाल आप भी हमें हमारे साथ हुकअप करते रहिए और हमें टाइम देते रहिए। थैंक यू सो मच, सुनते रहिए हमारे साथ, और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ हम हैं यहां पर आकाशवाणी रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: तू कर लेना।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदा।

0: बस बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की
3: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वेलकम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और अब बॉलीवुड क्वीन की बात की जाए। जी, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, और एक बार फिर से वो एक ऐसी फिल्म लेकर आ रही हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि साहस, सेवा और देशभक्ति के एक ऐसी आपको इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने वाली है कि बस आप उसको देखते ही रह जाएंगे। हाल ही में उनकी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया, और जिसके आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है उन्होंने। और पोस्टर में अस्पताल का माहौल है, आपातकालीन स्थिति और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों की झलक दिखाई देती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म उन अनसुने नायकों की को श्रद्धांजलि देती है जो कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों जैसे भयानक दौर में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। और जब पूरा देश आतंक के साय में था, तब अस्पतालों में कार्यरत नर्सें, डॉक्टर और वार्ड बॉय और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों

मरीजों की जान बचाने के लिए लगातार डटे रहे थे। और फिल्म इन्हीं साहसी लोगों की कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। और कंगना रनौत ने इस फिल्म में एक नर्स की भूमिका निभा रही हैं और मोशन पोस्टर में उनका गंभीर और समर्पित अंदाज देखने को मिलता है। और बिल्कुल इस फिल्म को निर्देशन कर रहे हैं इस फिल्म का वो है मनोज अतापड़िया। बिल्कुल, और निर्माताओं के अनुसार इस फिल्म सिर्फ एक घटना का चित्रण नहीं कर रही है बल्कि उन लोगों को उसके साहस, मानवता और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान कर रही है जो संकट की घड़ी में भी समाज के की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़े रहते हैं लगातार। और कंगना ने फिल्म गैंगस्टर्स के से साल 2006 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था। और आज भी निरंतर लगातार वो बस सेवा करती रही हैं सिनेमा के माध्यम से। और मोशन पोस्टर के सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर दर्शकों ने फिल्म के विषय की सराहना की है और कई लोगों ने इसे उन अनदेखे नायकों को समर्पित एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया है जिनकी कहानी अक्सर सुर्खियों से दूर रह जाती है। तो बिल्कुल हम भी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और आप सब भी 12 जून को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तब बेसब्री से सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल एक रियल स्टोरी को देखना चाहते हैं, उससे प्रेरित होना चाहते हैं, भावनात्मक तरीके से उससे प्रेरणा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फिल्म आपके लिए। और फिलहाल आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स।

एक तरफ पुरानी फिल्में अब भी दम दिखा रही हैं और दूसरी ओर नई रिलीज लगातार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 की। और फिल्म ने रिलीज के महज 9 दिनों में ही 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा पार कर लिया और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में अपनी जगह मजबूत कर ली है और दर्शकों को एक बार फिर से विजय सलगावकर की कहानी खूब पसंद आ रही है। और वहीं रोमांटिक ड्रामा चांद मेरा दिल भी दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है और अन्य पांडे और लक्ष्य की इस फिल्म ने दुनिया भर में 27 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त कंपटीशन के बावजूद फिल्म बिल्कुल यंगस्टर्स के बीच में बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। और उधर आयुष्मान खुराना की बात करें तो बिल्कुल उनकी कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी लगातार कमाई कर रही है और 15 दिन के बाद फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 60 करोड़ के करीब पहुंच चुका है और अच्छी वर्ल्ड वाइड बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या इसका बिल्कुल फायदा मिल रहा है इस फिल्म को। और साथ ही साथ बात उस फिल्म की जिसने 2026 में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया, बिल्कुल रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 द रिवेंज की रिलीज के 72वें दिन में भी सिनेमाघरों में बनी हुई है और लगातार बिल्कुल अच्छा कलेक्शन कर रही है। और भारत में इसका नेट कलेक्शन अभी तक 1148 करोड़ से अधिक हो चुका है जबकि दुनिया भर में फिल्म 1800 करोड़ का विशाल आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि अब जब इसकी रफ्तार हल्की हल्की धीमी पड़ रही है लेकिन इस फिल्म ने अब भी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी हुई है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सस्पेंस रोमांस कॉमेडी और एक्शन हर शैली की फिल्म के बीच इस समय बॉक्स ऑफिस पर दिलचस्प जंग जारी है। और बिल्कुल आप भी इस जो कॉम्पिटिशन है इस जो मेलेडी जो जंग चल रही है ना इसका इसको एंजॉय करते रहिए और बिल्कुल अपने जो एक जो वीकेंड का मजा ना वो लेते रहिए। फिलहाल सैटरडे है, संडे है, दो दिन है, छुट्टियां मनाइए और अच्छे से फिल्म देखिए। और बस हमारे साथ भी कुछ साझा करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और बॉलीवुड सताज के लिए आज का जो प्रश्न है बिल्कुल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत की पहली फिल्म कौन थी, उसका नाम आपको बताना है और आप बन सकते हैं हमारे बॉलीवुड सताज। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्टम्प्ड। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: जी हाँ, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी 102.6 पर। और बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे लिसनर्स के, और सभी ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, और कुछ ही पलों में आपके पास हमारे पास फोन आने वाला है, इसलिए फोन अपने पास रखिएगा और आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, जो फिलहाल सुनते रहिए हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, और कुछ ही पलों में आपको फोन आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, और ये गाना खास निकल रहा है आपके लिए।

और यही सवाल हम खुद से पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसे हैं, ये हमारा फोन ऐसा क्यों हो गया भाई, कि आपसे बहुत कोशिश की बात करने की लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट आज जो हमारे जो लकी जो लिसनर हैं बॉलीवुड सरताज जो आज बने हैं वो हैं रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से, और बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया, गैंगस्टर फिल्म थी उनकी पहली फिल्म कंगना रनौत की। और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आज हमारे बॉलीवुड सरताज बने आप, और उसके अलावा बहुत सारे तमाम सही जवाब मिले थे, लेकिन सबसे पहला जो आंसर मिला था रोहित श्रीवास्तव का मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और प्रवीण चौहान इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। साथ ही साथ जनानंद त्यागी मोदी नगर से, उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी इस वक्त झारखंड

उत्तराखंड से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सही जवाब के साथ। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। और विनय कुमार इस वक्त शालीमार बाग से कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है दानिश का, और ये है खतौली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राम प्रकाश इस वक्त नागौर राजस्थान से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सही जवाब के साथ जुड़े हमारे साथ। सोनू इस वक्त बिजनौर से कनेक्टेड हैं, और नरेंद्र सोनी भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये पटियाला से कनेक्टेड है हमारे साथ। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है शालू का शादीपुर से, बिल्कुल ठीक जवाब के साथ जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, और ये सोनीपत शांतिनगर से कनेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। फिलहाल बस अब चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन चलने से पहले अब बिल्कुल एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक क्यू अप कर रहा हूं आपके लिए, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6, क्योंकि यहां पर एंटरटेनमेंट की डोज कभी भी खत्म नहीं होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्ले इट कूल ज्योति अहलावत के साथ, स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting our Prime Minister and both leaders.
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को

0: मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट।
2: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
2: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर

0: के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। 1:05 हो चुके हैं और जब हम घड़ी में ये वक्त देखते हैं ना, तो क्या फील होता है? बिल्कुल फील होता है कि मेरा वाला सॉन्ग आने ही वाला है और कुछ ही पलों में बिल्कुल आपके वाला सॉन्ग आएगा। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर बिल्कुल प्ले करेंगे। 9868107070 और बहुत सारे मैसेजेस बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका। बहुत सारी मतलब एक साथ इतनी सारी लोडिंग होती है मैसेजेस की। और फिलहाल जो पहला गीत हम निकाल रहे हैं, अभी फिलहाल मौसम में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत राहत की अब उम्मीद सी लगी है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन जो अभी फिलहाल मौसम बना हुआ था और आने वाला मौसम भी ऐसे ही लगने वाला है आपको, इसलिए ख़ास ख्याल रखना है आपको और धूप से बचना है और ख़ास तौर पर जो लू चल रही है ना उससे आपको बहुत बचाव रखना है। पानी का उपयोग लगातार करते चले जाइए और बिल्कुल साथ में एक पानी की बॉटल रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज ऐसे मौसम में। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम ठीक ठाक बना हुआ है, घूमने वाला मौसम है, तो इसलिए घूमिए फिर लिए, छुट्टियां भी आपका साथ दे रही हैं। फिलहाल आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है मेरा वाला सॉन्ग में। आपकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर ज़रूर प्ले करेंगे, आप हमें जल्दी से मैसेज भेजिए और फिलहाल

और बिल्कुल आप भी बेचैनी अपनी दूर करिए, क्योंकि आपका गाना भी यहाँ पर कुछ ही पलों में आने वाला है। और फिलहाल मेरठ कैंट से इस वक्त हमारे साथ दिग्दर्शन और कविता जुड़े हमारे साथ, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने गाने की। बिल्कुल हम प्ले करेंगे आपके लिए गाना फिल्म क्रिमिनल से तुम मिले दिल के लिए, और जीने को क्या चाहिए, क्या बात है, तो आप मिलते हैं तो हम भी क्या चाहिए जीने को, बिल्कुल हमारा सब कुछ हासिल हो जाता है। और हितेंद्र दास भी इस वक्त हमारे साथ SM से कनेक्टेड है, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड, गुड आफ्टरनून भेज रहे, थैंक यू सो मच। और सोनिया विहार से कंचन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ भगवती भी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मनमोहन सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल इस वक्त और सुन रहे हैं हमें हमारा शो। और फिलहाल बस आप भी कनेक्ट रहिए हमारे साथ। और मनमोहन सिंह इस वक्त रामपुर से कनेक्टेड हैं, और प्रोग्राम बिल्कुल आप ही का अपना है, मेरा वाला सॉन्ग, और यहाँ पर आपको बस अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट करनी है, फिल्म का नाम बताना है, गाने के बोल बताने हैं, सिंगर का नाम बताना है, और उसके बाद इसको भेज देना 9868107070 पर। मौसम बहुत आसम है, इसको एंजॉय करते रहिए हमारे साथ, वीकेंड को और भी अमेजिंग बनाते चले जाइए हमारे साथ मेरा वाला सॉन्ग में।

और जब हमें आप की मुलाकात हो जाती है हमारी आपके साथ, तो हमें और क्या चाहिए होता है। किशन वजनानी इस वक्त रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कान से मोहम्मद फुरखान इस वक्त गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और शालू इस वक्त शादीपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है और ये है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जब भी आप रिक्वेस्ट भेजें तो नाम ज़रूर मैंशन कीजिए। वरुण वार्षणी इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ अजीत कुमार समस्तीपुर बिहार से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिता वर्मा पीतमपुरा से कनेक्टेड हैं। और बिल्कुल आपकी हम चॉइस का गाना जरूर प्ले करेंगे, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहिए। मर्डर फिल्म से आ रहा है दिल को हजार बार रोका रोका रोका, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप लगातार हमारे पास अपनी रिक्वेस्ट भेजते चले जाइए। आपका गाना भी हो सकता है अगला गाना जो हम आपके लिए प्ले कर पाएं। और फिलहाल अमन कुमार भी इस वक्त बागपत यूपी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ और आपका गाना भी बन सकता है, आपका गाना भी तमाम लोग सुन सकते हैं जो आप रिक्वेस्ट करेंगे। फिलहाल सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: करो करो करो।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और बिल्कुल हमारे पास इतने अमेजिंग मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे तमाम लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुकुंदपुर दिल्ली से और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारे पास। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है सोलापुर से, और ये श्री कृष्ण बंसोड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सोनाली भी उनके साथ हैं, श्रवण भी उनके साथ सुन रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमला रानी और गीतिका भानु इस वक्त उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और उनके साथ हैं बोधराज खोरवाल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सौरभ बनरेजा भी इस वक्त गाजियाबाद से कनेक्टेड हैं, रिक्वेस्ट नहीं भेजिए कोई लेकिन प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीलेश पवार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और नासिक में ट्रैवल कर रहे हैं और गाने हमारे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और अपने पसंद के गाने आपको सुनने को मिल जाए तो और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर आप अपनी रिक्वेस्ट वाले गाने प्ले कर रहे हैं और वही वाला गाना आपका बज जाए तो और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिलहाल इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग आशुतोष के साथ।

बिल्कुल, आप भी हमें बस ऐसे ना देखिए, बस सुनते चले जाइए और हमारे साथ अपने गाने गुनगुनाते चले जाइए, क्योंकि हम आप ही के गाने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ मिलकर। और फिलहाल हमारे पास एक और मैसेज है, देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ करबी आंगलोंग असम से कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमें मैसेज भेजने के लिए। नरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और साथ ही साथ अल्फिया खान, आयन खान और गुलफान खान इस वक्त हमारे साथ शाहदरा से कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, सोनिया विहार से कंचन इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शैलेंद्र वर्मा भी इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ और प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। और एक और मैसेज है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है नोखेलाल वर्मा का, और ये हमारे साथ कनेक्ट

पाटिल हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ यूं कनेक्ट रहने के लिए। नतेंद्र घोष इस वक्त हमारे साथ छतरपुर एमपी से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी और लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और ये बलबीर सिंह और ये हैं मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है भोपाल से, राम बाबू मालवीय, मनीषा मालविया और ये दोनों हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए हमारे साथ। और फिलहाल एक और अमेजिंग ट्रैक आप ही की रिक्वेस्ट का निकल रहा है और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं जब आपके गाने यहाँ पर हम प्ले करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल के भी बहुत करीब होते हैं। फिलहाल आपके इस गाने के माध्यम से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चांद के दीदार कर रहे हैं आपके माध्यम से। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग, अपने गाने की रिक्वेस्ट करते जाइए 9868107070। और मैं हूँ आशुतोष, आपके साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

वाह क्या बात है, पुरानी यादें ताज़ा कर दी आपने इस गीत के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये गाना आपने रिक्वेस्ट किया। और बस तमाम हमारे साथ जो श्रोतागण हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनीता शर्मा इस वक्त शालीमार बाग से कनेक्टेड हैं और हमारे सुन रही हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, और पंकज इस वक्त महाराष्ट्र से प्ले लिस्ट का बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और बिल्कुल ये आप ही के जो हमारे श्रोतागण हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट है, उन्हीं की प्ले लिस्ट है, और उनके गाने तो बेमिसाल होने ही हैं। जब हम उनके प्लेलिस्ट बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कविता देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और रंजीत मस्ताना रायबरेली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप भी। और मेघा सिंह इस वक्त हमारे साथ बिहार से कनेक्टेड हैं, और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, और ये हैं कोलार रोड भोपाल से बिल्कुल राम बाबू मालवीय जी, और थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उपदेश शर्मा, रोहित धीरज और ये हमारे साथ जुड़े हैं किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मौसम बहुत अच्छा होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल, और वो थोड़ा सा ठंडक हमारे यहाँ भी पहुँचा दीजिए, बस यही दुआ करते हैं हम भी। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है आदिल कमर और ये तकदीस अली और मुजफ्फर अली इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और आदावर्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही कनेक्ट रहिए हमारे साथ, और हम भी ये वादा करते हैं कि आपसे आपका गाना जरूर प्ले करेंगे। फिलहाल ये गीत खास आप ही की पसंद का हम निकाल रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग। और बिल्कुल एक और अमेजिंग मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, बस इस गीत के बाद दोबारा से शामिल करूंगा।

बिल्कुल, और सैटरडे आफ्टरनून में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद फुरकान इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है जनकपुरी से। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी कनेक्टेड हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शुरू में पहचान नहीं पाते लेकिन अब पहचान लिया, थैंक यू सो मच, बस आपका आशीर्वाद है, थैंक यू। और इस वक्त एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है अहमदाबाद से, ये हमारे साथ सावन लाल इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजय कुमार कामत इस वक्त बाग से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। और एक और मैसेज है इकबाल राय गुलाटी जी और तुषार गुलाटी जी का, इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है कुरुक्षेत्र से। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ अगर आप हमारे साथ अब तक शामिल नहीं हुए। और मोहम्मद इम्तियाज इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं जवाहर कैंप से, और साथ में उनके साथ हैं सलमा बेगम, अब्दुल राशिद और सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और एक और मैसेज है राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार और ख्याला विष्णु गार्डन से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस आप ही का फेवरेट गाना निकाल रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से। फिलहाल इस गीत के बाद बिल्कुल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूंगा और उसके बाद आपके गाने फिर से शामिल करेंगे। नंबर है हमारा 9868107070। इसी नंबर पे जल्दी से अपने गाने के बोल, मूवी का नाम, सिंगर का नाम या फिर एक्टर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा अपने नाम के साथ में, और हम उस गीत को प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारी।

0: से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और इस वक्त जर्मनी से सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और ईला भी इस वक्त उनके साथ जुड़ी हैं और शो को एंजॉय कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमें मैसेज भेजने के लिए। और साथ ही साथ मनोज कुमार, अंजलि कुमारी और हिमांशी कुमारी और प्रियांशी कुमारी इस वक्त संत नगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और शो को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ अंकित कुमार इस वक्त देवघर झारखंड से कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है अमन कुमार का बागपत से। और एक और ज़बरदस्त मैसेज हमारे पास आ रहा है, जय हिंद भेज रहे हैं। और ये हैं सोनम अरोड़ा और राधा शर्मा इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। और एक और मैसेज हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और जोया इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और एक और मैसेज ये है, कहाँ से बात कर रहे हैं, ये हैं कीमती कान और ये हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन उन्होंने अपने कटक से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और नमस्ते भेज रहे हैं हमारे पास सुमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सुनीत कुमार और ख्याला से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उत्तम नगर से भी हमारे पास मैसेज आ रहा है और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। फुरखाबाद से भी इस वक्त हमारे पास हरकैन सिंह का मैसेज हमारे पास आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉली भी इस वक्त दिल्ली से कनेक्टेड हैं और शो एंजॉय कर रही हैं। बहुत गाने अच्छे लग रहे हैं उनको, मेलोडीज ट्रैक लग रहे हैं सारे। बस हमारे लिसनर्स हैं, उन सभी की रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं और बस वो तो अच्छे लग रही हैं क्योंकि जब हम मिलकर एक दूसरे की पार्टी एंजॉय करते हैं ना तो ये पार्टी एक अमेजिंग पार्टी बन जाती है। फिलहाल इसराइल से भी इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार कनेक्टेड हैं हमारे साथ और नमस्कार भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये उन्नाव से कनेक्टेड हैं और उन्नाव से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अभी फिलहाल इसराइल में रह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और बस अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और आगे बातचीत कंटिन्यू करें लेकिन जाते जाते आपके लिए एक और अमेजिंग ट्रैक आप ही की चॉइस का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ख़ास आपके लिए। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हम अकेले हैं और आप भी अकेले हैं लेकिन हम जब दोनों साथ मिलते हैं तो हम अपने इस कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरे एक घंटे हमने अपनी कंपनी को एंजॉय किया और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो और इसके साथ ऐसे ही अपनी धुन को और भी सुंदर बनाते चले जाइए।

हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। मैं हूं सायम आपके साथ, और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो पर ना बहुत सारी कहते हैं ना बातें प्रोग्राम आशियाना के जरिए जब आपके साथ होती है ना, आपके आशियाने से जुड़ी बातें, आपके अपनों से जुड़ी बातें, क्या कुछ है आज इस प्रोग्राम में खास बातें होंगी। लेकिन खूबसूरत गानों का सफर लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं साइमा आपके साथ। और सीरियसली, जब आपके अपने आशियाने से जुड़ी बातें होती हैं, और कहते हैं ना कि घर एक ऐसी जगह है जो बनाएं तो बेहद खूबसूरत, ख्याल रखें तो और ज़्यादा खूबसूरत, और जहां अपनों का ख्याल रखा जाए, और ख़ास कर इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी बे इंतहा है, बड़ी शिद्दत वाली गर्मी है, और इसमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये कुछ जो दिन हैं, अभी 2-4 दिन ये कुछ हल्का फुल्का मौसम अप डाउन इसमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए बिल्कुल। और लगातार कहते हैं ना कि अपने आप को तभी बाहर निकालिए जब आपको बेहद ज़रूरी काम है, बिना किसी काम के बाहर नहीं जाइए, क्योंकि गर्मी बेहद ज़्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त में। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और कहते हैं ना, गर्मी हो और आइसक्रीम का मज़ा ना लिया जाए, ऐसे भला कैसे हो सकता है। फिलहाल आपका जो फ्रिज है ना, वो आइसक्रीम बड़े संभाल के रखता है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल

रखना बेहद ज़रूरी होता है। वो कौन सी बातें हैं बताऊँगी आपको, लेकिन कहते हैं ना कि जब आकाशवाणी रेनबो और खूबसूरत गानों का सफर ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। एक ही प्यारा सा साउंड ट्रैक और आपके लिए, कहीं मत जाइए, बनी रहिए प्रोग्राम आशियाना में। मैं हूँ सायमा आपके साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं सैमा आपके साथ। इस वक्त चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में जुड़ी बातें आपके अपनों से, आपके घर से, आपके जो खास हैं उनसे। और कहते हैं ना कि ऐसी गर्मी में, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आइसक्रीम ना हो भला ऐसे कैसे हो सकता है, आइसक्रीम का मज़ा ना लिया जाए ऐसे कैसे हो सकता है, होता है ना कई बार। और कई बार हम क्या करते हैं कि जो आइसक्रीम्स होती हैं ना, उनको घर में ला के संभाल के फ्रीज़र में रख देते हैं। और कई बार होता क्या है कि हम ये नहीं सोचते कि ये हमने संभाल के रखी तो है, फिलहाल इसकी डेट कहीं निकल तो नहीं, कहीं एक्सपायरी तो नहीं हो गई। और कुछ ऐसी बातें जो बेहद ख़ास ध्यान में रखने वाली होती हैं, वो ये कि जब आइसक्रीम आप एक बार रख देते हैं तो उसको जितना जल्दी हो जाए, अगर आपने आइसक्रीम खोल के रखा है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको कंज्यूम कर लेना बेहतर होता है। क्योंकि उसके कहते हैं ना कि जब कोई भी अगर पैकेज्ड फूड है या आइसक्रीम है, जब एक बार खुल जाता है तो उसको ज़्यादा देर तक फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपकी एक्सपायरी डेट्स हैं उनका बेहद ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और कई बार होता है कि निकाल कर रख लेते हैं आइसक्रीम और फिर सोचते हैं कि नहीं भाई अब तो कुछ और दिन चल जाएगा, लेकिन सही जो तापमान है जिसमें आपने आइसक्रीम रेफ्रिजरेट करी है वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल आइसक्रीम ऐसे ही फ्रिज में रख दी तो उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कहीं कुछ हद तक ख़राब होने का डर रहता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, इन चीज़ों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो अपनी सेहत है ना, आपकी सेहत, आपके अपनों की जो सेहत है वो बेहद ख़ास होती है। ज़रा हल्की सी सेहत गड़बड़ाई और फिर क्या, फिर तो बस परेशानी ही परेशानी। तो ऐसे में अपना ख्याल रखना और अपने जो ख़ास हैं, घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे

जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एक छोटे से ब्रेक के बाद साइमन फिर आपके साथ, और इस वक्त चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम आशियाना। आशियाना में क्या कुछ है खास फिलहाल? आजकल गर्मी का जो कहर कहा जाए ना, वो बेहद सर चढ़ के बोल रहा है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले भी बताया था, अभी फिर एक बार बता रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ख्याल अपना रखा जाए उतना बेहद ज़रूरी। और बढ़ते तापमान में, यानी कि जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है ना, इसमें क्या कुछ ख़ास बातों का ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको लू लगती है ना, तो ऐसे में तबीयत का ख़राब होना, भूख नहीं लगना और आलस महसूस होना, चिड़चिड़ापन, और ये जो गर्मी की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इनसे बचने के लिए बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी है हाइड्रेशन। गर्मी में सबसे पहले हाइड्रेशन मेंटेन रखने की सलाह दी जाती है। और क्या आप जानते हैं, पसीने के साथ बॉडी से ना सोडियम और पोटेशियम जैसी मिनरल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और ऐसे वक्त में अगर आप फौरन से बॉडी हाइड्रेट नहीं करते हैं तो सिर में दर्द, और क्योंकि जब आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो साथ साथ वाटर इनटेक करना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं करते हम स्वेटिंग के साथ साथ, अगर हम पानी का इंटेक नहीं बढ़ाते हैं, तो सिर में दर्द और मसल्स में खिंचाव, चक्कर आना, उल्टी होना या कमज़ोरी भी महसूस होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अपने आप को जितना हो सके उतना हाइड्रेट की रखिए। और अगर बात की जाए ठंडा और कुछ बेहतर हल्का फुल्का खाना ऐसे मौसम में जो है ना, वो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी और ऊपर से थोड़ा तला भुना हम खा लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो पेट की हालत ख़राब होती है ना, वो सीरियसली कहीं ना कहीं आपको परेशान ज़रूर कर देती है। तो ऐसे में जितना हल्का हो, फ्रूट्स हो, वाटरमेलन हो, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेते हैं ना, और हाँ, फ्रूट्स कभी भी खुले में मत खाइए, क्योंकि खुले में खाने से फ्रूट्स जो बाहर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर कटे हुए फ्रूट्स रखे हैं, कुछ तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हम अनदेखी कर देते हैं इन चीजों की, है ना। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखने की खास जरूरत है, क्योंकि गर्मी का जो इतना ज्यादा अभी हम असर देख रहे हैं, लोग बागों को डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, लू भी लग रही है, तो अपने आप को ख़ास करके संभाल के रखने की ज़रूरत है। और डाइट में मैग्नीशियम वगैरह कहते हैं ना, कि जो आपका डाइट होता है वही आपको बहुत हद तक संभाल के रखता है, तो अपनी डाइट का बेहद ख़ास ख्याल रखें और जितना हो सके धूप से बचें। और साथ में कहीं कुछ लगता है तो फौरन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह लेना ना बहुत ज़रूरी होता है। घर में हम छोटे मोटे जो कहते हैं ना कि हम ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, उपचार कर लेते हैं, उनका ठीक है, बहुत हद तक घर में चीज़ें चलती हैं, बट फॉरेन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी भी होता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं सैम आपके साथ। और कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन अब बात अगर करें बागवानी की यानी कि गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग ऐसे मौसम में अपने घर को हरा भरा देखना कितना अच्छा लगता है ना। और गार्डनिंग की अगर बात की जाए, हरियाली और उसमें थोड़ा सा वक्त बिताना, थोड़े से दिमाग और दिल को सुकून देना, और जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है वो बेहद बखूबी कहते हैं ना कि जान सकते हैं कि जब गार्डनिंग की आती है, पौधों को लगाया जाता है, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया जाता है, और कहते हैं ना कि जब छोटे छोटे से चीज़ें जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वक्त बहुत आसानी से निकल जाता है। अब गार्डनिंग में आप किस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो भी जो गार्डनर्स होते हैं ना, यानी कि जो बागवानी करना पसंद करते हैं, वो अपने घर को सजाने के लिए वेस्ट मटेरियल्स का भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। और कहते हैं ना कि घर में छोटे से छोटे मोटे जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, आप उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करके और गार्डनिंग को बखूबी अपनी खूबसूरती, कहते हैं ना गार्डन की खूबसूरती का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं घर में छोटे मोटे टायर्स पड़े हो, या टूटा फूटा कोई मटका पड़ा हो, कुछ मिट्टी का बर्तन पड़ा हो, या कुछ कप पड़े हो, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जब हमें करने में मज़ा आने लगता है, गार्डनिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी जिन्हें शौक़ होता है, यह हम करके देख सकते हैं, तो सच में वक्त कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता। और कहते हैं ना कि खूबसूरती की खूबसूरती, हरियाली की हरियाली, और दिल दिमाग को जो सुकून मिलता है गार्डनिंग करके, वो तो कहना ही क्या। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो वाकई में गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ जो हमारे दोस्त भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अगर गार्डनिंग करते हैं, तो वो बेहद ख़ास तरीके से अपने गार्डन को सजाते होंगे, संवारते होंगे। ये हम कहते हैं ना कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत करना चाहते हैं, वक्त उसमें दिया जाता है, और वक्त के साथ साथ जब वो खूबसूरती निकल के आती है हरियाली के साथ में, तो वाकई में बहुत दिल को सुकून देती है। फिलहाल एक और प्यारा सा गाना आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

बेहद खूबसूरत गाना भी आपने सुना आकाशवाणी रेनबो पर। अब यहाँ सायमा को दीजिए इजाज़त क्योंकि बबीता आ गई हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर लेकर के, और उम्मीद है आप इस प्रोग्राम का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक प्यारे से गाने के साथ आपको छोड़ जाती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे 4 से 5, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। तब तक रखिए अपना ख्याल।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आपके साथ है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपकी ख्याल रखता है, आपके लिए रोज आता है नए नए कार्यक्रम लेकर स्वास्थ्य की नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही एक कार्यक्रम आज आपके समक्ष फिर। कार्यक्रम का समय वही है 3 से 4 और चैनल भी वही, आपका प्यारा एफएम रेनबो 102.6। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर को। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर। आज का हमारा विषय बहुत खास, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे यानी एमएस डे। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, कई हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना और समाज में इसके बारे में जानना, क्योंकि अगर कोई इससे पीड़ित है तो उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, उससे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, उसको सोशली कैसे इंक्लूड करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट जो कि हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आप सबकी भागीदारी। अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ पूछना चाहते हैं, इस विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं झिझकना है, जुड़ना है रेडियो डॉक्टर के साथ। और आज का जो ये विषय है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास धिकव, आप हैं क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। पहले डॉक्टर विकास धिकव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को चूज किया है, शुक्रिया। और मुझे

0: पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी अवेयरनेस जनरेट होगी इस दुर्लभ बीमारी के बारे में।
1: जी बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरे हमारे रेडियो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। डॉक्टर आशु बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: नमस्कार मैम।
1: और डॉक्टर साहब आप दोनों का बहुत स्वागत है और हमारे श्रोता भी स्वागत करेंगे जब हमसे प्रश्न करेंगे और प्रश्न हम चाहते हैं आप एमएस से संबंधित करें। और हमारे साथ दोनों जो एक्सपर्ट हैं वो पूरी तन्मयता के साथ पूरे विश्वास के साथ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और साथ ही कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सबसे पहला प्रश्न मैं ही ले लेती हूं, मुझे मौका मिल गया। डॉक्टर साहब ये बताइए, पहले हम समझ लेते हैं कि एमएस क्या है, फिर हमारे श्रोता और हमारे से प्रश्न करेंगे।
0: जी देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक किस्म की दुर्लभ बीमारी है और दुर्लभ हम बोले तो 20 से 40 लोग लगभग 1 लाख पॉपुलेशन में से इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे चलती है, कभी कभी सडन इसके एपिसोड्स भी होते हैं। ऑटो इम्यून जैसे आपने बोला, ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, नॉर्मली कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसके ऊपर हमारे एंटीबॉडीज अटैक करते हैं, लेकिन इस बीमारी में हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल अंग हैं, उनके ऊपर ही हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक किस्म से हमारी जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे एंटीबॉडीज का अटैक होता है। तो उससे क्या है कि जो हमारा माइलिन है, माइलिन यानी कि जो जैसे बिजली के तार होते हैं तो तार के ऊपर एक लेयर होती है, तो वो जो लेयर इंसुलेशन है तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उससे क्या है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, तो छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होते हैं तो फिर सिम्टम्स आते हैं। तो एक किस्म से हम कहें कि महिलाओं में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। एक इसकी एक खास बात है, विचित्र बात है कि अगर पूरी धरती को देखें तो भूमध्य रेखा है, धरती के बीचों बीच गुजरती है, तो जितना भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं तो सूरज जो है वो कम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है, तो वहां वहां इसका खतरा ज्यादा होता है। और हम जो है भूमध्य रेखा के पास हैं तो हमारा खतरा इतना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो बीमारी के मरीज हैं उनकी संख्या धीरे धीरे भारत में भी बढ़ रही है।
1: जी, तो जैसा आपने समझाया बहुत ध्यान से मैं इस बात को समझ रही थी कि दूर होते जाना मतलब सनलाइट से कुछ संबंध है
0: जी।
1: और सनलाइट को हम कहते हैं तो विटामिन डी से कुछ संबंध
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसा है क्या?
0: बिल्कुल, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट संबंध है। और तभी देखिए जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है,
1: अच्छा,
0: तो उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो जोखिम है वो ज्यादा होता है।
1: अच्छा।
0: पहले ये जो शब्द है मल्टीपल, इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, तो इसमें बार बार अटैक्स आते हैं बीमारी के, इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब देखे तो नर्व जो है वो सॉफ्ट होती है और इसमें हार्ड हो जाती है क्योंकि जख्म हो जाते हैं नसों के ऊपर, और जब नसों के ऊपर जख्म हो गए तो जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनका ट्रांसमिशन है, न्यूरल ट्रांसमिशन है, वो कमजोर हो जाता है। और जब न्यूरल ट्रांसमिशन कमजोर हो गया तो जैसा हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट होंगे तो सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स आएंगे तो देखिए फिर ये एक लंबे तौर पे चलने वाली बीमारी बन जाती है। तो ये एक किस्म का क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है
1: जी। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानना अभी जरूरी है और कार्यक्रम का समय अभी है तो हम बहुत कुछ जानेंगे। जैसा आपने बताया कि लक्षण कैसे होते हैं, मल्टीपल टाइम्स अटैक आ सकता है, वो क्यों, कारण क्या बनता है, लेकिन पहले मैं डॉक्टर आशु से जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी हम सोचते हैं आजकल जब हम बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, ये अब हम मान चुके हैं, पहले ये चीजें नहीं लोग अवेयर थे पर अब ये लगभग सब जान चुके हैं और हम कार्यक्रमों के माध्यम से बार बार इसके अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप सर्जरी कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। तो किस तरह से एमएस और फिजियोथेरेपी जुड़ती है?
2: मैम, जब हम लोगों के पास केस रेफर होता है आफ्टर न्यूरोलॉजिस्ट, तो उसमें किस केस पे, किस स्टेज पे वो केस रेफर हो रहा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। तो सपोज अगर वो एक्यूट में आता है और उसका किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, तो फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो मेनली सिम्टोमेटिक हो जाता है कि पेशेंट को किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, वो किस स्टेज में हमारे पास आया है। तो फिजियोथेरेपी का रोल एक्यूट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एमएस के अंदर जो सबसे पहले देखा गया है, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एक आता है वो है फैटीग का, क्योंकि
1: अच्छा।
2: पेशेंट को बहुत जल्दी मसल फैटीग होने लगता है। तो मसल फैटीग होने के लिए उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करना, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमें उसको मेंटेन भी करना है, हमें

0: को इंक्रीज भी करना है, उसकी पावर को, उसकी जो मसल टोन है उसको मेंटेन करना है, ताकि पेशेंट थके. अगर पेशेंट फैटीग में ज़्यादा जाता है तो उसका जो बीमारी का प्रभाव है वो बढ़ सकता है. प्लस इसके अंदर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि विटामिन डी का इसमें बहुत रोल है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का एक वॉकिंग का प्रोग्राम डिसाइड हो. पेशेंट सुबह के टाइम जब सूरज बाहर निकला हुआ है, सुबह 7 से 11 के बीच में बाहर जाएं, विटामिन डी का अपना लेवल को चेक करें. उसके अलावा जैसे उसमें हमारा एक जो मेन रोल आता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रीदिंग का भी मसल, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी रहती है. तो किस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. लेटर स्टेजेस में हम उसमें चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैलेंस की दिक्कत आती है, तो हर स्टेज बाय स्टेज हम लोगों का रोल उसके अंदर आता है.
1: फिजियोथेरेपी हर जगह उनकी मदद के
0: और
1: लिए
0: उसमें हम लोग. एंड एक और जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा रोल एज ए साइकोलॉजिस्ट भी एज ए, बिकॉज वी स्पेंड मोर टाइम विद देम, तो कई बार हम लोग वो ऐसी चीजें भी उनसे शेयर करते हैं जाकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है. एंड उनकी टीम के, उनकी फैमिली के साथ बात करनी है, फैमिली को शेयर करना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस. बेसिकली
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब उठाई है और मैं चाहूंगी कि हम विस्तार से इसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले हमारे कॉलर जो जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं. हेलो
2: जी, नमस्कार. मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ.
1: जी जी बताएं, स्वागत है, नमस्कार.
2: मेरा जी जी जी आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ. मेरा एक ये क्वेश्चन पूछना है कि जिसको ये बीमारी लग जाए तो क्या उसका कोई परमानेंट इलाज है या उसका परमानेंट इलाज नहीं है, और ये बीमारी जो है किस उम्र से शुरू होती है, क्या इसकी उम्र का भी कोई तकाजा है कि बचपन से होती है या बुढ़ापे में जाके होती है.
1: ठीक है.
2: तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बीमारी एक घर में किसी को लग जाए तो क्या ये किसी दूसरे मेहमान, दूसरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को लग सकती है या नहीं लग सकती है, बस इसके मेरे क्वेश्चन.
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद. ये सारे प्रश्न हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं. डॉक्टर विकास जी.
3: जी जी जी. देखिए अग्रवाल जी, बीमारी जो है इसका नेचर ऐसा है कि ये शुरू में इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है, उसके बाद डीमायलिनेशन तक चलती है, यानी कि जो नसों का कवरिंग है वो धीरे धीरे एक किस्म से वो गल जाता है और वो कवर जो है वो उतर जाता है, तो नर्व जो है वो उनमें आपस में शॉर्ट सर्किट होता है और सिम्टम्स आते हैं. तो ये बीमारी हम ये नहीं कहेंगे लाइलाज है, इसका अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन इसको क्योर नहीं कर सकते. ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक है, तो मैनेजमेंट फोकस्ड है. और ये 20 से दूसरा सवाल आपका 20 से 40 साल की उम्र में होती है, लेकिन कभी कभी 16 साल के मरीज भी हम देखते हैं और कभी कभी 60 साल के भी देखते हैं.
1: क्या बाय बर्थ कोई केस नहीं होता?
3: हाँ, ये इनका तीसरा सवाल था कि ये हेरिडिटरी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, लेकिन हाँ जेनेटिक कंपोनेंट है. तो अगर देखें, कहें कि पापा में है तो बेटे में जोखिम ज्यादा होगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्राइमरीली एक ऐसी बीमारी है कि अगर मान लिया फादर में है तो डॉटर में होगी ही होगी, ऐसा नहीं है.
1: जी, एक और प्रश्न इन्होंने शायद कुछ ऐसा मुझे जो समझ में आया कि एक से दूसरे में फैल सकती है क्या, तो कंटेजियस तो नहीं है?
3: बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फॉलोड बाय डीमायलिनेशन ऐसी किस्म की बीमारी है, तो ये एक से दूसरे में तो कभी भी नहीं फैलेगी. एक जब हम किसी मरीज की देखभाल करते हैं तो देखिए हमारा जो केयर गिविंग सपोर्ट है उससे प्यार बढ़ता है, बीमारी नहीं बढ़ती है, बीमारी घटती है.
1: और एक और चीज से प्यार बढ़ता है, गाने सुनने से.
3: जी जी,
1: क्योंकि अच्छे अच्छे जब हम गाने सुनते हैं तो हमें गानों से प्यार होता है, हमें अपने चैनल से प्यार होता है, रेडियो डॉक्टर से भी प्यार होता है.
3: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: तो एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, डॉक्टर विकास की पसंद का ये गीत है और मुझे भी बेहद पसंद है, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत.

0: ये प्यारी सी मखमली आवाज थी यसुदास की, और सच में सही कहा गया है कि जीवन उसका है जो दूसरों को जीवन देता है, और ऐसे ही दो जीवन देने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे प्यारे डॉक्टर्स जो रेडियो डॉक्टर में आते हैं और हमें कृतज्ञ करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता वेट भी कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, ये गाना खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गाना भी आपको खूबसूरत लगा होगा जरूर, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। जी आप आए लाइन पर, अपना प्रश्न पूछें। हेलो
1: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
1: जी मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही।
0: जी जी राजेंद्र जी,
1: मेरी उम्र 48 वर्ष है और वेट मेरा 70 से 80 kg और 6 फीट मेरी हाइट है। तो पहले तो रेडियो डॉक्टर की भी डॉक्टर शालिनी मैम को, शालिनी तो भाई नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार
3: नमस्कार
1: जी। मेरा पहला सवाल, 3-4 सवाल है मेरे। मेरा पहला सवाल ये है कि जो MS की प्रॉब्लम है, डिजीज जो है ये, इसकी अगर मैंने सुना है कि जैसे हम घरेलू तौर पर जो कुछ फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं या कुछ अनाज होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है, जैसे रीता फली सब्जी खाओ या फिर शिरोधारा या ये शीर्षासन करो, तो मैं जानना चाहता था ऐसे कुछ डाइट या एक्सरसाइज, इससे इसकी रिकवरी हो सकती है। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बचपन में मैं होता ये था 1991 तक, मैं कोई भी मैटर उठाऊं एक बार, अगर उसको पढ़ लो एक बार या देख लो सुन लो, तो मुझे उसको दोबारा इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर आज मेरे को 3-4-5 जो है वो मतलब उसको दोहराना पड़ता, तब मेरे दिमाग में बात घुसती है।
0: मेमोरी लॉस है ना डॉक्टर साहब?
1: जी हाँ जी। तो क्या ये भी
0: उम्र के साथ?
1: हाँ जी, क्या ये भी MS से रिलेटेड है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि आपको धूप में बैठना चाहिए या विटामिन डी लेना चाहिए, तो मैम इन दिनों होता ही है कि जैसे ये फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज कूलिंग मांगता है, उसी तरीके से मेरा ब्रेन भी कूलिंग मांगता है, जब जहाँ हीट ह्यूमिडिटी होती है, ये फूड पॉल्यूशन डस्ट पॉल्यूशन होता है, तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, तो मुझे ठंडी या तो रेल करके इसकी मसाज करनी पड़ रही है, या फिर मुझे जो है ठंडे पानी से अपने सिर की सिकाई जो है सिकाई करनी पड़े, तब मुझे मेरा दिमाग काम करता है, और मेरे को इन दिनों स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है।
0: राजेंद्र जी बहुत सारे प्रश्न आपके हो गए हैं, हमें और भी श्रोताओं को समय देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो आपके ये 3 प्रश्न डॉक्टर साहब ने नोट किए हैं और वो बारी बारी से बता रहे हैं। सब्जियां फल, वैसे हम बात करने वाले थे डाइट का रोल क्या है इसमें, तो बता दें तो यहीं पे हमारे श्रोता सुनेंगे।
3: जी जी, देखिए बैलेंस डाइट का रोल तो शालिनी जी हमेशा से है
0: जी,
3: लेकिन इनका पर्टिकुलर सवाल है कि कोई ऐसा फूड या ऐसा कोई फल जो कि ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है मेमोरी के हिसाब से, तो ऐसे काफी सारे हैं, जैसे अनार का जूस है या जैसे कोकोनट है, तो ये दिमाग के लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो इनके पहले सवाल का जवाब तो ये है।
0: अच्छा।
3: दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरी मेमोरी धीरे धीरे फेड हो रही है, तो अगर तो देखिए ये खुद अगर MS के पेशेंट हैं तो ये हमें नहीं पता, इनकी बात से थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन अगर नहीं है तो
0: स्लीप एपनिया की कुछ
3: हाँ वो लास्ट में बोल रहे थे, तो अगर मान लिया हम किसी भी MS के पेशेंट को देखें, ये 20 से 40 के सालों में शुरू होता है, मान लिया 30-35 पे शुरू हुआ, तो ये धीरे धीरे चलता है, और MS का जो मरीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, वो 70-75-80 तक आराम से जीवन बिता सकता है, तो इस उम्र में 60 के बाद में इनको डिमेंशिया होने की संभावना भी रहती है। तीसरा, इन्होंने कहा कि मैं कभी कभी मेरा जो दिमाग है वो मांगता है कि इसको कूल करना है, हाँ जैसे फ्रिज को,
0: हाँ।
3: तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। अच्छा। तो ब्रेन फॉग जो है इसमें काफी कंफ्यूजन होता है और आप जो है इनडिसाइसिव स्टेट में होते हैं, तो ब्रेन फॉग अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक सलाह तो इनके लिए है, ये पहले अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना पूरा चेकअप कराएं, ताकि ये पता लगे कि ब्रेन फॉग क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या इनको ये प्री MCI की स्टेज तो नहीं है, प्री MCI का मतलब है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की स्टेज तो नहीं, उसमें भी ब्रेन फॉग होता है, तो पहले अपनी जांच कराएं, उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और जो स्लीप एपनिया है देखिए, उसके लिए तो पूरा थोरो वर्कअप होता है, तो वो जब जाएंगे तो वो स्लीप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को इनको डॉक्टर रेफर करेंगे।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक ही शुड गेट इट हिमसेल्फ डायग्नोस्ड, क्योंकि ये काफी सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं
0: जी, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं,
2: तो अगर ये एस्टेब्लिश्ड केस नहीं है MS का, सो देन ही शुड नॉट वरी, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं और उसमें कई बार प्रॉब्लम बहुत कम होती है. और ये स्लीप एपनिया है और ये सब चीजें आजकल वैसे भी थोड़ी कॉमन चल रही हैं. तो दैट वे ही शुड नॉट वरी, फर्स्ट ही शुड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड. उसके बाद अगर इनको लगता है कि हाँ मुझे न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी टेस्ट जो है MRI या जो भी उनके टेस्ट हैं उसके बाद अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो बेटर रहेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात. और डॉक्टर साहब देखिए मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मैसेज किया है. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो पहला मैसेज हम तक पहुंचा है वो लंदन से आया है और लिखने वाले हैं हमारे श्रोता जो हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट है ये इम्पीरियल कॉलेज लंदन में और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दे रहे हैं. साथ ही लिख रहे हैं मेरा नाम विश्वास है, मैं लंदन में रहता हूं. एक प्रश्न है कि क्या चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ GBS कैन लीड टू MS इन फ्यूचर. और मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नेचर ऑफ बोथ डिजीजेस आर सिमिलर एंड GBS हैज बीन इन राइज इन इंडियन चिल्ड्रेन. तो डॉक्टर विकास क्या कहेंगे?
3: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका. डॉक्टर विश्वास नमस्कार. और देखिए आप भूमध्य रेखा के दूसरी साइड से उत्तरी गोलार्ध से हमें सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन आपका जो सवाल है देखिए रिसर्च लेवल का सवाल है क्योंकि दोनों जो बीमारियां हैं उनकी नेचर सिमिलर है और दोनों में ही एक किस्म से डिमाइलिनेशन होता है वेरिएबल डिग्री का. लेकिन दोनों का को एकरेंस भी

0: तो हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले अगर गुलेनबेरी सिंड्रोम हुआ है तो उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भारतीय बच्चों में गुलेनबेरी सिंड्रोम देखा गया, तो बच्चों में क्या कुछ समय पहले बड़ों में भी कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, तो वो कुछ समय पहले की बात है। लेकिन जहां तक इनके सवाल का जवाब है तो हम तो कहेंगे अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है और एक थोरो रिसर्च के बाद ही इस सवाल का जवाब दिया जा
1: जी, और
0: सकता है।
1: रिसर्च हर फील्ड में हो रही है, एमएस के क्षेत्र में भी हो रही है, तो हम
0: जी
1: जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अनीता तेजवानी जी ने हमसे लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर्स एंड शालिनी जी, एमएस क्यों होता है पहले हम ये जानें, क्योंकि इनका प्रश्न बहुत बेसिक है और ये हम सब जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको एमएस होने की क्या संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो ऑटो इम्यून की श्रेणी में आती हैं, तो ये बताएं।
0: जी देखिए, पहला सवाल इनका कि क्यों होता है। तो पहला तो है जैसे फीमेल जेंडर, महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह रहे महिला होना एक कॉज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन महिलाओं में संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, जिन जो धूम्रपान करते हैं उनमें भी संभावना ज्यादा है। एक वायरस है जो कि 95% लोगों में होता है, एप्स्टीन बार वायरस। तो एप्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन है तो संभावना ज्यादा होती है। एक किस्म का एक हर्पीज वायरस होता है, तो अगर वो हो गया है, किसी को वायरल इन्फेक्शन होते ही रहते हैं तो भी संभावना ज्यादा होती है। लो विटामिन डी अगर किसी का है या उसका सन एक्सपोजर कम है तो संभावना ज्यादा होती है। या फिर अगर मान लिया घर परिवार में किसी को एमएस है तो संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो हुआ जो कारक है। अगर कोई कहे कि एक सिंगल रीजन आप बताइए कि एमएस क्यों होता है, तो कोई एक सिंगल रीजन नहीं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अब देखिए, जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अगर किसी में हो तो संभावना ज्यादा होगी। तो अगर हम दूसरे जो इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बाकी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, अस्थमा है फॉर एग्जाम्पल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनके साथ एमएस की एसोसिएशन है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉज है, ये वजह नहीं है, लेकिन संभावना तो बढ़ती है।
1: डॉक्टर अशोक ये बताइए, जैसे फिजियोथेरेपी को डॉक्टर विकास ने कहा कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते
0: जी
1: हैं, तो इसमें जो फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है, जैसा आप पहले भी मुझे बता रहे थे कि किस
0: जी
1: तरह से आप गाइड करते हैं पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, और इवन जो आते हैं आपके पास, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कैसे किया
0: मैम,
1: जाता
0: इसमें
1: है।
0: क्या होता है, बिकॉज हम लोगों की ग्रेजुअल मसल वीकनेस की तरफ चली जाती हैं। हमारी लोअर लिंग्स की जो मसल्स हैं, हिप की मसल्स हैं, नी की मसल्स हैं, जिससे पेशेंट्स में इनिशियली टाइटनेस होती है, फिर वो धीरे धीरे अगर उनको ध्यान नहीं रखा गया तो वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, जिसके कारण उनको चलने फिरने में, बैलेंस में और बाकी चीजों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि उनको, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके साथ जो केयर गिवर्स हैं, उनको एक होम प्रोग्राम बताया जाए ताकि वो उनको बार बार क्लिनिक पे आने की, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। इसको हम बोलते हैं कि मेंटेन द ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, वो ज्वाइंट की जो एक मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ उनको इसमें पॉस्चर के प्रॉब्लम आने के भी चांसेस रहते हैं, पॉस्चर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पॉस्चर को कैसे सही मेंटेन करना है। अगर कुछ हमें ऑर्थोटिक डिवाइस चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्चर को या डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कुछ बैलेंस के इश्यूज आ गए हैं लेटर स्टेजेस में, तो उसमें हम लोग कुछ प्रोप्रायोसेप्टिव और बैलेंस एक्सरसाइजेस बताते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी गाइड करते हैं कि जो घर का एटमोसफेयर हो वो पेशेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि इसमें कई बार विजन लॉस के डिप्लोपिया भी हो जाता है और कई बार ब्लर्ड विजन भी रहता है। तो उनका जो वॉशरूम है, उनका जो कमरा है, उसमें सब चीजें ऐसी रहे जाकि अगर कोई चांस है फॉल होने का तो उसको हम हटाएं वहां से, या अगर हम और कोई मेथड उसमें यूज कर सकते हैं तो उसके माध्यम से हम उनका जो एक फ्रेंडली एटमोसफेयर बने। क्योंकि जब इनके एक्यूट सिम्टम्स होते हैं तब कई बार देखने में और सेंस में और स्किन की भी मतलब इश्यूज आते हैं, तो जो मल्टी उसके हिसाब से उनका जो सिस्टम सारा का सारा सेट हो और उनके हिसाब से उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन हो। प्लस आज की डेट में एक्वाथेरेपी का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल आ गया है, तो जिसमें कि जाके पेशेंट को थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर पा रहा हूँ, बिना थके उस पानी के अंदर हम कुछ सिंपल एक्सरसाइज उनको बताते हैं, जिसको कि जैसे अवेलेबिलिटी है उनकी उसके हिसाब से जाके हफ्ते में 2 या 3 दिन। इसके अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल एक और भी है, जो कि मोस्टली एमएस पेशेंट्स के साथ हम लोग प्रोग्राम जब डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस हफ्ते में 2 या 3 दिन, एक लिमिटेड टाइम के लिए हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज टू मेंटेन देयर मसल, प्लस हम लोग हफ्ते में 2 या बाकी बचे हुए दिन में वॉक या फिर हम लोग एक्वाथेरेपी, ताकि पेशेंट्स जो हैं उनकी मसल्स फैटीग में भी ना जाएं और जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें ताकत बनी रहे और उनके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आए, ताकि जब

0: स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, नॉर्मल हमारे पॉस्चर की चीज़ें हैं, तो योगा से उससे बढ़िया तो फिर और कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, बट उसको अगर हम सुपरवाइज इनिशियली उसका भी अगर हम सुपरविजन के अंदर कर लें और टाइम टू टाइम अगर उसको हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें तो उससे हमें उसमें काफ़ी मदद मिलती है।
1: जी
2: जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अब जो चल रहे हैं उनमें ये पता लगता है कि अगर MS के जो मरीज हैं वो शुरुआत में ही अगर योगा करें, सुपरवाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर शुरुआत से ही योगा करें तो उनको, जैसे डिप्रेशन एक एक इमोशनल सिम्टम, मेंटल सिम्टम है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है। फिर इनको बॉडीली पेन होते हैं अलग अलग जगह पे, वो कम हो जाता है, और साथ में इनको जो स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस जो है, मसल स्पाज़म जो है या ब्लैडर स्पाज़म है, वो कम हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी जो इश्यूज होते हैं काफ़ी स्पेशली लेट स्टेज में, तो उनके लिए भी योगा, अनुलोम विलोम या प्राणायाम काफ़ी यूजफुल है। तो एक और खास सिम्टम होता है इनमें, क्रॉनिक फटीग। ये थके रहते हैं MS के मरीज, बहुत ज्यादा थके रहते हैं, तो उस थकावट के लिए भी योगा एक एनर्जी का काम करता है। तो एविडेंस अब आ रहा है धीरे धीरे कि योगा की यूजफुलनेस है, और जैसा इन्होंने कहा कि एक नेचुरल फॉर्म जो कि कल्चरली एक्सेप्टेड है, लो कॉस्ट है और यूनिवर्सली अवेलेबल है। तो अब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो छोटे गांव में ना हो या छोटे शहर में ना हो, तो वहां पे अगर कोई मरीज होता है तो वो सीख के किसी से योगा करे तो उसको फिजियोथेरेपी जैसा फायदा हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं MS पर, आज है वर्ल्ड MS डे। हमारे जो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास धीकव, आप क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डॉक्टर विकास के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में रिसर्च तो कर ही रहे हैं, लेकिन गानों में भी अच्छी रिसर्च है आपके ऊपर, गाने में क्या कहेंगे?
2: मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको गाने नहीं पसंद हो।
1: नहीं, पसंद तो हमें है, लेकिन हमें पता है आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। अगर हमारे श्रोता थोड़ा सुन लें वो डिसाइड कर सकते हैं।
2: हाँ, अगर आप
1: दो चार लाइनें सुना दीजिए।
2: जी जी जी, तो
1: एक ये प्यारा सा गीत है डॉक्टर साहब, मैंने निकाल रखा है अभी, ए अजनबी, दिल से फिल्म का, ये थोड़ा सा सुनाएंगे अगर आपको आता हो तो।
2: जी जी जी।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, एमएस डे जिसे कहा जाता है। और देखिए डॉक्टर साहब, सिर्फ हम ही तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपकी बहुत सारे श्रोता भी हमें तारीफी मैसेज कर चुके हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा आपने गाया है। फरीदाबाद से कपिल ने लिखा है बहुत, और तालियां भी बजाई है उन्होंने, इमोकन्स भी भेजे हुए हैं कि बहुत अच्छा गाया सर ने, आपकी चॉइस भी काफी अच्छी है, तो थैंक यू कर दीजिए। और बहुत सारे मैसेज हमारे श्रोताओं ने ऐसे भी लिखे हैं जो अपनी समस्याएं हमसे पूछ रहे हैं। तो ये हमें मैसेज करा है मीरा सिंह ने सिलचर आसाम से, और यही नाम लिखा है इन्होंने, शायद मीरा सिंह सिलचर आसाम। इन्होंने लिखा है कि मेरे राइट लेग के अंगूठे के जॉइंट में कभी कभी बिजली जैसे करंट लगता है और फिर जलन भी फील होती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी की कमी है मेरी, एज है 59+, क्या करूं, योगा भी करती हूं। और एक इन्होंने प्रश्न लिखा है कि मेरे हस्बैंड को हर्पीस शोल्डर्स के नीचे हुआ था पर अब भी वहां इचिंग होती है, तो बहुत ड्राइनेस भी है, उनकी एज 68 है।
1: जी जी जी, देखिए ये हो सकता है मीरा जी काफी चलती हों, कभी कभी चलने की वजह से या जो हम फुटवेयर पहनते हैं उसकी वजह से भी कोई एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हल्की सी हो जाती है, तो बिजली का झटका जैसे है वैसे लगता है। और जहां तक बात है इनके हस्बैंड की, तो इन्होंने ऐसा बताया है कि शोल्डर के नीचे इनको हर्पीज हुआ, तो वो जॉस्टर हुआ होगा, तो उसमें ये हल्के हल्के बिजली के झटके ऐसे लगते हैं। लेकिन यहां पे ये बताना जरूरी है कि अगर एमएस हो, ये तो एमएस नहीं है ऑब्वियसली, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक फिनोमेना होता है, उसको हम लर्माइट फिनोमेना बोलते हैं। लर्माइट में क्या होता है कि जैसे ही आप गर्दन नीचे करते हैं या गर्दन साइड में करते हैं तो बिजली के झटके लगते हैं और ये मल्टीपल लगते हैं, और ये इसकी पहचान भी है। और आम इंसान एक एसी लक्षण से आसानी से एमएस को पहचान सकता है। बाकी भी और हैं, जैसे अगर किसी को हम एक कहें कि झंझनाहट हो रही है हाथ में या पांव में, झंझनाहट अक्सर हाथ से शुरू होती है, हथेलियों से शुरू होती है, उसके बाद फोर आर्म में जाती है, या फिर अचानक हम देखें कि लेफ्ट साइड में एक किस्म से वीकनेस शुरू हो गई है या पैरालिसिस आ गया है या पैरापरेसिस हो गया है, दोनों टांगे जो है वो उनमें कमजोरी आना शुरू हो गई या बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो ये तो हुए इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो जहां तक मेंटल सिम्टम्स है तो उदासी रहना या बहुत एंग्जाइटी होना, और जो कॉग्निटिव सिम्टम्स है याददाश्त का धीरे धीरे कमजोर होना, चीजें रख के भूल जाना और बाद में स्ट्रगल करना, और जो ऑक्युलर सिम्टम्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, अचानक देखिए एक आंख की रोशनी चलेगी या दोनों आंखों की रोशनी चलेगी तो ये बहुत ज्यादा स्केरी हो सकता है, या धीरे धीरे रोशनी जा रही है या आंखों के सामने बहुत धुंधलापन नजर आ रहा है, तो एमएस को पहचानना आसान है। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन है, डायग्नोसिस लेट होता है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये जो झंझनाहट है ये किसी और वजह से होगी, ये एमएस की वजह से ना हो, और क्योंकि ये जो बीमारी है ये रेयर है, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से 2 लाख मरीज ही हैं एमएस के, तो ऐसा नहीं है हर एक झंझनाहट एमएस नहीं है और हर एक सुनपना जो है वो एमएस नहीं है, तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपना जो थोरो इवैल्यूएशन वो करवाइए, तभी जो बीमारी है देखिए उसका निदान हो सकता है।
0: जी जी, आपने बताया बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ही है इसका। लेकिन जैसे आपने बताया कि किसी को ऐसा फील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है, झुंझुनाहट है या जितने भी आपने सिम्टम्स बताए, तो एक तो वो पहुंचे सबसे पहली बात है, डॉक्टर से कंसल्ट करे, पर वहां जाकर क्या टेस्ट किए जाते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये एमएस ही है।
1: जी देखिए ऐसा होता है कि अगर तो आप एक एमएस का फॉर्म होता है रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग 85% अच्छा। होता है, तो अगर मान लिया आरआरएमएस है, बार बार अटैक हो रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री है, तो वो इटसेल्फ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत पता लग जाता है कि झंझनाहट है, वीकनेस है, स्पाजम है या बाउल ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का दोनों का एमआरआई ब्रेन किया जाता है और ये गैडोलिनियम एनहांस होता है, जीडी एनहांस हम इसको बोलते हैं, तो उसमें जो ये पैचेस हैं, जो स्पॉट्स हैं, तो वो दिखते हैं, तो पैचेस और स्पॉट्स जो हैं वो, और इसके साथ में जो सीएसएफ का टेस्ट है जिसमें ओलिगोक्लोनल बैंड होता है तो वो दिखता है, और इसके अलावा हम सोमैटोसेंसरी पोटेंशियल इवोक पोटेंशियल, वो एक किस्म से नसों की जांचें होती हैं तो वो करवानी पड़ती है। तो समरी अगर करें तो नसों की जांचें, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसका पानी, और एमआरआई ब्रेन, और एमआरआई जो हम बोलें कि आपका स्पाइन है उसका, तो इससे फिर डेफिनेटिवली हम डायग्नोज कर सकते हैं,
0: कंफर्मेशन हो जाता है।
1: जी जी
0: जी। देखिए ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार से लिख रहे हैं कि डॉक्टर विकास और डॉक्टर आशु शालिनी मित्तल आपको तीनों को सादर प्रणाम, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी हमें मिलती है, तो धन्यवाद रणधीर जी, आप इसी तरह से जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ। और अनूप कुमार लिख रहे हैं झारखंड से कि मुझे रांची में आप रहते हैं, लिख रहे हैं कि बीपी शुगर है मुझे काफी सालों से, 55 इयर्स की एज है शायद इन्होंने लिखा है क्या, सिंस 37 इयर्स मुझे ये बीमारी है और ईयर लीकेज एक साल से हो रहा है, रिंगिंग साउंड फील होती है, वाइब्रेशंस फील होते हैं बैकबोन में, तो क्या ब्रेन इन्फेक्शन है या क्या मैं करूं, प्रिकॉशंस क्या लूं, एक्सरसाइज क्या करूं?
1: जी जी, देखिए बीपी शुगर है इनको और लंबे समय से है, तो ये हो सकता है कि अगर इनका, हमें नहीं पता इनका शुगर कंट्रोल में है या नहीं, इनका HbA1c क्या है तो, या ब्लड शुगर रैंडम कितना है, तो ये अपना HbA1c और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, अपना बीपी कंट्रोल में रखें, तो हो सकता है कि ये कोई न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं इनको, डायबिटिक न्यूरोपैथी के, तो उसकी वजह से इनको ये झंझनाहट होती है, तो अपना थोरो चेकअप करवाएं, उसके फिर एक फाइनल इवेल्युएशन होगा जिससे पता चलेगा कि इशू क्या है।
0: जी, पारुल जानना चाह रही है डॉक्टर साहब बड़ौदा से, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ क्या MND और MS सेम है? MND इन्होंने ये भी शॉर्ट में लिखा है, आप
1: बिल्कुल, मोटर न्यूरॉन डिजीज बिल्कुल अलग है, बोले तो ये दो मरीज होते हैं 1 लाख पे, इतना रेयर है, और MS के 20 से 40 मरीज होते हैं 1 लाख पे, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले लंदन से कॉल आया था तो इंग्लैंड में देखिए 150 से 200 मरीज होते हैं पर 100,000, तो वहां पे इसका प्रेवलेंस ज्यादा है, तो MND बिल्कुल अलग है, सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं दोनों के, जो क्लिनिकल फीचर्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां दोनों अलग है, कोर्स भी दोनों,
0: और पता तब चलता होगा जब पूरा डायग्नोसिस होता होगा उनका, क्लिनिकल डायग्नोसिस,
2: डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सारी एक जैसी दिखती है लेकिन उनका किस कारण है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइन की है, या उनका क्या प्रोग्रेशन है, कितना लाइफ है, कितना उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम रह सकते हैं, तो वो फिर सब डायग्नोसिस के बाद ही है,
0: और डायग्नोसिस के बाद ही फिर जैसा आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट हम देना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उनके सिम्टम्स होंगे वैसे वैसे हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशु, हम पहले बात कर रहे थे, आपने बीच में बोला कि बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली फ्रेंड्स केयर गिवर्स का, सोशल एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है आदमी के लिए, तो जब इस तरह के केयर गिवर्स आपके साथ आते हैं MS के पेशेंट के साथ, वो कोई एक यंगस्टर भी हो सकता है, फैमिली का ब्रेड अर्नर भी हो सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप?
2: मैडम एक्चुअली MS का या किसी भी ऐसी इस टाइप की लंबी बीमारी जिसे हम कहें क्रॉनिक बीमारी, न्यूरोलॉजिकल स्पेशली, तो उसमें इट हैज टू बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो अगर इस तरफ एक डॉक्टर के पास चले जाएं या सिर्फ एक फिजियोथेरेपी के पास चले जाएं, या हम सोचें कि हमने ट्रीटमेंट चल रहा है हम उससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, इसमें हमारा इमोशनल, इसमें हमारा साइकोलॉजिकल कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आजकल हम गूगल पे काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बिना ये जाने कि हम किस स्टेज पे हैं या हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें फैमिली का और केयर गिवर्स का रोल, तो उसमें एक सोशल वर्कर का रोल बहुत आ जाता है, जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले उनको ये बताना कि लाइफ इस बीमारी के आगे भी लाइफ है, फिर उस टाइप की कुछ कम्युनिटी बनी हुई है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे स्पेशली MS के पेशेंट्स को जाके आप मिल सकते हो, आप जो 15-20 साल से जो एक्यूट केस है, अगर वो वहाँ जाके अपने जो 15-20 साल से उसके बीमारी से जूझ रहे हैं कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं उनके, और उनको क्या क्या दिक्कतें आई और उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं कि क्या हम प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग

0: कहते हैं कि अब ये हो गया, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वो एक बहुत गलत अप्रोच है. तो उसके बाद हम लोग अपने को कैसे लाइफ स्टाइल को हम अपने को बेटर कर सकते हैं, और कम्युनिटी का रोल है कि कम्युनिटी के लिए हम, ताकि उस टाइप से एक्सेप्टेंस हो. बिकॉज अगर हम अपना इनिशियल शुरू से ध्यान रखते हैं तो आई थिंक हम बहुत लास्ट तक उसमें अपना एक बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं. तो उसमें पूरी फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोशल वर्कर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्योंकि कई बार किसी लेवल पे कुछ हमें असिस्टेड डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, या कई बार हमें एम्बुलेशन में दिक्कत पड़ रही है. तो काफ़ी सारी चीज़ें, अगर ये हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी तो हम एक पेशेंट को जो कि MS की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको हम काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं.
1: जी जी, ये जो अभी पारुल ने बड़ौदा से पूछा था डॉक्टर साहब MND के बारे में, इन्होंने आगे ऐड किया है कि मेरी सिस्टर को MND है, तो इसीलिए ये जानना चाहती थी, क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक हो सकती हैं. और साथ ही साथ इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि मैम क्या आप रेडियो डॉक्टर में MND पर भी एक सेशन रख सकती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे देखते हैं अपने किसी क्लोज को तो हमें बहुत दुख भी होता है. आई एम वेरी सैड टू सी माय सिस्टर इन द सच सिचुएशन. तो वो हम समझ सकते हैं आपकी बात पारुल जी, बिल्कुल समझ सकते हैं, और बिल्कुल हम इस पर भी कार्यक्रम जरूर करेंगे. और अभी फिलहाल मैं डॉक्टर से पूछूंगी.
2: जी देखिए, MND जो है एज अपोज टू MS एक गंभीर बीमारी है. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं अगर आपका डायग्नोसिस टाइम पे हुआ है, आपका ट्रीटमेंट ठीक समय से शुरू हो गया है, और आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है, आप मोटिवेटेड हैं, आपके इमोशनल डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन अच्छे से लुक्ड आफ्टर है, और आपकी केयर गिविंग सपोर्ट बहुत अच्छी है, फैमिली सपोर्ट अच्छी है. जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है वो बिल्कुल अलग किस्म की बीमारी है. उसमें ब्रेन स्टेम सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, निगलने में दिक्कत होती है, फिर बाद में जो अपर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट होता है, और ये बेसिकली मसल्स की अट्रॉफी हो जाती है. तो हाथ पांव जो है वो एक किस्म से बहुत ढीले पड़ जाते हैं. तो एग्रेसिव फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है. दवाइयां हैं, सपोर्ट है, लेकिन इसको बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग की न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू जरूरत होती है. तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है कि ये भी एक बीमारी है, तो जिसके बारे में जागरूकता बहुत ही कम है. MS के बारे में तो फिर भी धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, तो वो फ्यूचर में किया जा सकता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर जरूर कार्यक्रम शीघ्र करेंगे. और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी. और ये हमें प्रश्न किया है, हमें लिखकर भेजा है हमारे एक श्रोता हैं, प्रेम पाल सिंह दिल्ली में रहते हैं. इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को चेहरे पर हर्पीस हुई थी और काफी दिनों तक इलाज करना पड़ा. कि ये जानना चाहते हैं क्या MS की वजह से हर्पीस भी होती है, क्या दोनों का आपस में संबंध है?
2: नहीं, देखिए 55 साल के बाद में वेरिसेला इन्फेक्शन होते रहते हैं, और उसकी वजह से फेस पे या अपर चेस्ट पे या ट्रंक पे दाने हो जाते हैं, काफी इचिंग होती है. तो वो एक कॉमन बीमारी है, समय के साथ ठीक हो जाती है. लेकिन 55 साल के बाद जो अडल्ट हर्पीज होता है उसको, उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. तो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ही इसका सोल्यूशन है.
1: जी, और ये मैसेज लिखने वाली हैं अंजलि सिंह सिलीगुड़ी से. ये लिख रही हैं, रात को सोने पर मैं झंझनाहट महसूस करती हूं और नींद भी मुझे इसलिए अच्छी नहीं आती, क्या करूं, 65 इयर्स एज है. और बहुत अच्छा गाना गाया डॉक्टर साहब आपने. ये भी इन्होंने लिखा है साथ में.
2: अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया. तो मुझे लगता है कि यही आपका इलाज है कि सोने से पहले मुझे लगता है आप अच्छा म्यूजिक सुने, और आकाशवाणी पे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक चलता रहता है. तो सूदिंग म्यूजिक सुने, और थोड़ा सा जो जैसे फिजिकल मेडिसिन में एक एक्सरसाइज होती है जिसको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन बोलते हैं, PMR, तो कहीं से PMR सीखें. थोड़ा सा मसल्स की टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है तो वो करें, थोड़ा योगा भी कर सकते हैं, और टहलें, परिवार के आसपास रहें. और आपको मालूम है कभी कभी अकेलेपन से भी दिक्कतें होती हैं, तो ये अगर आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा कुछ अखबार या कोई पत्रिका पढ़ें, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, अच्छी नींद आएगी.
1: जी, आपने कहा कि रिलैक्स करना जरूरी है, और अभी अंजलि जी भी शायद सुन रही है, कार्यक्रम सुन रही है ना अंजलि जी, तो आप सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा गीत यहाँ पर आपके लिए, हम सबके लिए. एक मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि गाने भी सुनते रहना चाहिए,
2: जी
1: है ना, तो एक गीत सुन लेते हैं.

0: से।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। हैट्स ऑफ टू ब्रिलियंट टीम ऑफ रेडियो डॉक्टर। ऑल डॉक्टर्स डिजर्व बिग थैंक्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो गुड एंड टेंशन फ्री, लिख रही हैं प्रोमिला बेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर विकास, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, लिखकर भेज रही हैं मंजू भाटिया द्वारका से, दिल्ली से।
2: सो मच मंजू जी।
1: और यशपाल जी हमें लिख रहे हैं थैंक यू सो मच शाली मैम एंड बोथ डॉक्टर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दिस लाइव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। आप ये बताएं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एमएस एंड सिज़ोफ्रेनिया?
2: हाँ, दोनों अनकनेक्टेड है। शिज़ोफ्रेनिया एक प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और एमएस एक प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन एमएस में कभी कभी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं
3: लेटर स्टेज।
2: हाँ, ऑब्वियसली एडवांस फेज में आते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली फेज में कॉग्निटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, तो इट वेरीज
1: जी। और अंजलि जी भी हमें दोबारा से थैंक यू बोल रही हैं। आपने उनको जो गीत सुनाया आपने और फिर बाद में हमने जो गीत सुनाया उन्हें, अभी वो दोनों ही अच्छे लगे। और ये लिख रही हैं कि मैं गाने की बहुत शौकीन हूं, तो चलिए एक बहुत अच्छी बात आपने बोली है, गाने सुनेंगे और बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री रहेंगे आगे से अंजलि जी, और हमारा कार्यक्रम जरूर सुनती रहेंगे। समय कम है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि रिसर्च में हैं आप, न्यूरो साइंटिस्ट हैं और हेल्थ रिसर्च में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, तो इस फील्ड में यानी एमएस के फील्ड में क्या कुछ हम अच्छी खबर सुन सकते हैं कमिंग डेज में?
2: जी, एक दर्जन दवाइयां अवेलेबल है। आप देखिए 1970s में ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेरॉयड था, उसके बाद में बीटा इंटरफेरॉन आया, ग्लैटियमर एसिडेट आई, फिंगोलीमोड आ गया, टेरीफ्लुनामाइड, और अब

0: सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गए हैं, तो अब एक वे फॉरवर्ड है, कोई ऐसी दवाई जो कि जो माइलिन चला गया है या जो इंसुलेशन चला गया है उसको रिप्लेस करे, इस पर काम हो रहा है। और सस्पेक्टेड है कि एप्स्टीन बायर वायरस जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये सस्पिशन है। तो उसके लिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट अभी चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, कोई ना कोई और ब्रेक थ्रू आए।
1: जी, तो अच्छी खबर आ सकती है और रिसर्च इसीलिए की जाती है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उस
0: जी
1: बीमारी पर हम काबू पा सकें,
0: जी
1: और
0: जी
1: ऐसा भी बहुत शीघ्र होगा। डॉक्टर आशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, विटामिन डी, और आप एक रूटीन देते हैं पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को समझाते हैं किस तरह से, पर मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए?
2: मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इलनेसेस बेसिकली। तो राइट फ्रॉम अ पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली, टू बी विद पॉजिटिव पीपल, और इसमें हम अपने आप को जितना बिजी रखेंगे अदर एक्टिविटीज में, बिकॉज देर इज लाइफ बियॉन्ड दिस। इनिशियली जरूर हम लोग कई बार शॉक फेज में चले जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वेन वी सी कि इसका बहुत इसमें इसके साथ भी लाइफ बहुत अच्छी तरह से दी जा सकती है, बट हमें थोड़ा सा उसके अंदर अपना एक डिसिप्लिन, एक अपना मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, थोड़ा अपने को एक्वा थेरेपी, अपने जो काम है उसमें रखें, अपना जो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, उनके साथ हम एक हेल्दी रिलेशन रखें अपने को, एंड स्टार्ट कीप लुकिंग फॉर दी व्हाट आर दी अदर एवेन्यूज अवेलेबल। और उसके साथ में एक बेसिक मिनिमम अपना डॉक्टर का जो विजिट है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तब जाते हैं जबकि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जो भी रूटीन हमारा है एक डॉक्टर के विजिट का, उसको हम ध्यान रखें, और छोटे से छोटा सिम्टम अगर कोई आ रहा है उसको इग्नोर ना करें, और जो हमारा एक डिसिप्लिन है लाइफ का जिसके साथ कि हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग कर सकते हैं, तो उसके साथ हम बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी लाइफ मेडिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के साथ हम लोग जी सकते हैं।
1: जी, तो आज हमने बात की मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, और हमारे साथ हमारे दो रेडियो डॉक्टर्स रहे, डॉक्टर विकास धिकव, क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु और डॉक्टर विकास आपको यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए, और सभी लिसनर्स का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े, और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। परिधि लिख रही है दिल्ली से, बिग थैंक यू टू शालिनी जी एंड ऑल डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड इन टू रेनबो एंड रेडियो डॉक्टर। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए। अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेट अफसरों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री DK शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। महीने भर चलने वाली यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री

भारत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वान हो से जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-19 से जीतकर बढ़त हासिल कर ली है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो। अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में, एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जाने आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा

रहे हैं, आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। ये आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं और भलाइयों का प्रबंधित करके आप जो करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसे अपने मूल्य के साथ संरेखित करने की क्षमता रखेंगे, तो आप खुद के प्रति अधिक सच्चे होंगे और दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बदले में आपके संभवतः सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है, तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है, वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है, वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यवसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने के वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में
ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। With this very good information, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. spice.lamhe.vanilla. दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। एक बार फिर मैं हूं सैमा आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम अल्फा जैन। लेट्स डिटॉक्स। क्या कुछ है आज इस प्रोग्राम में खास? डिटॉक्स कैसे अपने आप को करना, किस तरीके से। कई बार आपकी जो सोच होती है ना, वो आपको बहुत हद तक कभी कभी ना अपने से दूर कर देती है। वो कैसे? कई बार हमारा जो वक्त होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारे वक्त दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमें अपना ये वक्त दूसरों को ज़्यादा देना है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना है, और ऐसे में हम अपने आप को भूल जाते हैं। और वही अपने आप को भूलना दूसरों की नज़र में आपकी अहमियत को कम करा देता है। तो अपने आप को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इन चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, और कैसे अपना वक्त कीमती समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे आज इसी बारे में। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ और खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा। प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए, बने रहिए प्रोग्राम अल्फा जैन में।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जन, मैं हूँ सायमा आपके साथ। और सीरियसली, या तो आबाद कर दो या बर्बाद कर दो। कई बार होता है ना कि हम अपनी जो हकीकत होती है ना, उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। कैसे हकीकत? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार, वक्त हम सबको देते हैं लेकिन कोई हमारे वक्त की कदर ही नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना ना, वो अपने लिए ही कभी कभी परेशानी खड़ी कर देता है। आपकी जो अहमियत होती है ना, वो लोग आपकी जो कदर होती है, अहमियत होती है, उसको करना बंद कर देते हैं, कदर करना बंद कर देते हैं। और वो सोचते हैं भाई, ये तो जब बोलो तभी हाजिर है, जब कुछ कहो तभी ये काम करने के लिए तैयार है, और कभी भी ये इंसान मना ही नहीं करता है। तो ऐसे में आपकी जो कद्र होती है ना, वो बहुत हद तक कम होती चली जाती है। और अपने आप को किसी चीज़ से बाहर निकालना, अपने आप के लिए जीना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अपनी अहमियत को समझना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपनी अहमियत खुद नहीं समझते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, तब दूसरे आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपकी अहमियत कम हो जाती है क्योंकि आप खुद ही नहीं संभल पाते, सोच नहीं पाते, और हमेशा अच्छा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर होता होगा। कहीं ना कहीं आप भी ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते होंगे। लेकिन वक्त रहते अगर हम संभल जाएं, वक्त रहते कभी हम कहते हैं ना कि कुछ गलतियां करके सुधर जाएं, तो संभलना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।
1: असला रखिया पात पात जिद अल्लड़ रखे पर दानी जत दी तकनी दा हर कोई

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।

0: www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

एक छोटे से ब्रेक के बाद सैम फिर आपके साथ लेकर आई है अगले प्रोग्राम अल्फा जैन, और फिलहाल खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक, एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।

बेहद खूबसूरत गाना सीरियसली, है ना। चल चल मेरे संग चल, सीरियसली संग चलना बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपका साथ देता है, आपके साथ रहता है। लेकिन कई बार साथ चलते चलते क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि दूसरा शायद हमें वो साथ नहीं दे पा रहा, लेकिन हम उस साथ को बराबर निभाते जा रहे हैं। फिलहाल ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वक्त एक बार फिर याद दिला देती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देना और अपने अहमियत को, अपनी कदर को कम करवा देने की, जो एक हम खुद ब खुद कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम खुद उस चीज़ के शिकार बन जाते हैं, हम उस चीज़ को खुद अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि भाई हम दूसरे को ज़्यादा वक्त देंगे, दूसरे की कदर ज़्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कदर भूल जाते हैं, अपना करियर भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है, दूसरों के लिए जीना चाहिए। लेकिन कई बार होता है ना कि आप अपने आप को भूल कर दूसरे के लिए जीने लगें, ऐसा करना भी सही नहीं होता है। उस चीज़ को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, या किसी को भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वक्त उतना ही दीजिए दूसरे को जितना कोई आपको समझ सके, आपके वक्त को समझ सके, आपको समझ सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को समझना। जब तक आप अपने आप को नहीं समझते ना, तब तक वक्त आप किसी को कितना भी दीजिए, कोई आपको नहीं समझ सकता। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान, मैं हूँ साइमा आपके साथ। और वक्त बहुत ज़रूरी है अपने लिए, आपके लिए, और कहते हैं ना दूसरों के लिए भी। लेकिन जब आप अपने वक्त को कीमती नहीं समझते तो दूसरा भी आपके वक्त को कीमती नहीं समझता। कई बार हम भूल जाते हैं, ये सोचते रहते हैं कि हम दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए जीते रहें, लेकिन अपने आप को भूल जाना बहुत हद तक अपने आप को ही दिमागी तौर पे परेशानी देने का सबब बन जाता है। हम सोचते हैं कि हमने उसके लिए अच्छा किया लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया, हमने उसके साथ ये बिहेव अच्छा किया था लेकिन उसने हमें सबके बीच में ऐसा कह दिया, या हमने उसके लिए वक्त निकाला, हमने उसके ये काम किए लेकिन उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया। तो चीज़ें होती हैं ना कहीं अपने आप को परेशानी में डालने वाली, ऐसी परेशानी के सबब भी आप खुद ही बनते हैं। और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने लिए जीना नहीं सीखते तब तक आप हमेशा कहीं ना कहीं दिमागी और दिली तौर पर लोगों से जुड़ने के साथ साथ परेशानी भी मोल ले लेते हैं। और जब परेशानी आपको दो चार कर देती है तब फिर कहीं ना कहीं अपने आप से ही सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने आप को समझने के लिए अपने आप को वक्त देना बेहद ज़रूरी है। दूसरों के लिए भी वक्त होना चाहिए लेकिन अपने आप को जानना, अपने लिए जीना, अपने आप के लिए खुश रहना, अपने लिए वक्त निकालना बेहद ज़रूरी है। लेट्स डिटॉक्स, फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और कहते हैं ना कि प्रोग्राम में खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान। वक्त की कमी भी है मेरे पास, लेकिन हाँ आज हम बात कर रहे हैं अपने आप की अहमियत के बारे में। दूसरों को वक्त देते देते कभी हम अपने आप की अहमियत भूल जाते हैं और ऐसे में खुद अपने आप को परेशान कर बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, किसी को ध्यान रखते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं और फिर किसी के एक बार कहने पर दौड़े चले जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी अहमियत, अपनी कद्र कम कर देते हैं, कम करवा देते हैं उन लोगों की नज़रों में जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं। फिलहाल अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, कभी ना कहना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि हम हर बात में हाँ हाँ करते रहते हैं और लोग समझते हैं कि भाई ये कभी मना नहीं करेगा, याद हमेशा करते हैं लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसे में कभी ना करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कभी वक्त निकालने के बावजूद भी आपको जब दुख मिलता है तो सोचने की ज़रूरत है कि हम में कहीं तो कुछ कमी है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने आप के लिए काम करने की ज़रूरत है।

हमें अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है और कभी कभी दूसरों को ना कहने के लिए भी सोचना चाहिए। हमेशा हर किसी के लिए हर वक्त हर मोड़ पर खड़े रहना भी कहीं ना कहीं आपके लिए ही परेशानी का सबब बन जाता है। फिलहाल इसी तरह तो बातें होती रहेंगी, लेकिन वक्त की कमी भी है मेरे पास, मुझे जाना भी है। इस वादे के साथ अगली बार फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम को नए अंदाज में लेकर के। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज

भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी पर ये वक्त है एक और धमाकेदार शो का, और ये धमाका कौन मचाने वाली है, ये धमाकेदार शो प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष हूँ मैं बबिता त्रिपाठी, और शो का नाम है सिटी लाइट्स। सिटी मतलब कि दिल्ली एनसीआर, और उसकी जो लाइट्स हैं मतलब कि जो भी अपडेट्स हैं, जो भी खास बातें हैं वो आप तक पहुंचेंगी इस शाम। और ये शाम हो चुकी है एकदम जबरदस्त, चमकती हुई, शानदार। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ खास हुआ है दिल्ली एनसीआर में। क्या खास हुआ है? दिल्ली एनसीआर वाले तो जानते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर वाले लोग शायद कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तब तक अंदाजा लगाइए, लौट कर आती हूँ मैं और बताती हूँ दिल्ली में क्या है खास। वैसे तो पूरे ही घंटे चलेगा यही जो कुछ भी दिल्ली एनसीआर में नया अपडेट है, नई खास बातें हैं वो सब बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है ना वो सबको राहत देने वाली है। कौन सी है बताऊंगी ना फिलहाल। ओए बे बे, एंजॉय दिस सॉन्ग।

अजी शाम क्या पूरा का पूरा दिन ऐसा चमचम करता था कि वो चमक हम लोगों को बुरी लगती थी और लगता था कि सूरज देवता महाराज थोड़ा सा ये चमक कम कर लीजिए, शायद हमें राहत मिल जाए। और ऐसा ही कुछ आज का भी हाल था और मौसम विभाग ने कुछ और ही कह रखा था। मौसम विभाग ने कह रखा था कि भाई बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं और तापमान में गिरावट हो सकती है। थोड़ी बहुत तापमान में गिरावट हुई थी लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि शाम होते ही कुछ अलग ही नज़ारा होगा शाम का। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मौसम विभाग से शायद कुछ गलती वलती हो गई है और मुझे कुछ करेक्ट करना होगा। जब शो करूंगी तो आपको बताऊंगी कि ऐसा अनुमान था लेकिन हो नहीं सका। लेकिन क्या मजाल कि ऐसा हो, शाम आई मतलब ये शो शुरू होने से जस्ट पहले क्या जबरदस्त बारिश हुई है हमारे इलाके में, यानी दिल्ली में, दिल्ली के बीचों बीच बैठे हैं जी। और यहाँ आकाशवाणी से दिल्ली से जब हम शो कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा भीग कर आए हैं। ये ना घमंड वाली बात, मतलब घमंड के लेवल तक पहुंच सकती है, पता है क्यों? क्योंकि इतनी जबरदस्त चिलचिलाती धूप से निकल कर आए हैं हम और जब थोड़ी सी राहत मिली तो सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि थोड़ा तो राहत मिलेगी, भले ही कल से धूप हो जाए कुछ तो आराम मिलेगा। मतलब ऐसे तप रहे थे लोग ना, ऐसे लोग, पेड़ पौधे, जानवर, कि लग रहा था थोड़ी सी राहत मिल जाए। और उसके बाद तो लोगों ने कहा था कि 4-5 दिन तक तो बिल्कुल ही राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा ऐसा ऐसे टाइम चल रहा है। लेकिन भगवान जी की नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने जो बारिश की है, वैसे मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया था। अब मैं थोड़ा फैक्ट्स पर आती हूँ। उन्होंने कहा था और कहा है भी कि अभी कल तक आप सबको अलर्ट रहना है, 5 से 8 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है और आई भी है, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश कहीं कहीं हो सकती है। तो आप सबको अलर्ट रहना है मौसम विभाग के अनुसार। और अब देखने को भी मिल रहा है, हालांकि पूरे दिन यहां पर नहीं दिखा था, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है उन्होंने और 5 से 7 डिग्री की सेल्सियस गिरावट भी आएगी तापमान में। लेकिन 31 मई से 4 जून के बीच में फिर से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। यानी कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो

ये जो वक्त है वो बहुत ज्यादा लंबा चलेगा, लेकिन हम तो इसी वक्त में खुश हैं, इसी पल में खुश हैं। जो पल खुशियों के मिल जाए उसमें हमें खुश रहना चाहिए, और यही सिखाता है हमारा आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो दिल से दिल तक कनेक्टेड रहिए दिल्ली एनसीआर के बारे में, अपने शहर के बारे में जो भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचती हैं हर शाम सिटी लाइट्स में। फिलहाल आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। शाम हो चुकी है शानदार, तो ऐसे में ये गाना भी बनता है, आप सुनते रहिए और इंजॉय करते रहिए सिटी लाइट्स।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। वर्ष 1977 में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को आकाशवाणी के माध्यम से जनता से जुड़ने का मंच दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक दल को आकाशवाणी पर 2 चरणों में 15-15 मिनट का समय दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों और विचारों को सीधे आम जनता तक पहुंचाने का समान अवसर प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त चुनाव वाले राज्यों में दूरदर्शन केंद्रों पर भी दलों को एक बार प्रसारण का अवसर दिया गया। ये पहल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसने मतदाताओं तक संतुलित और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

देखिए जी, अब आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े हैं तो आपकी हर शाम शानदार होगी ही। और शाम क्या है, यहाँ तो 24 घंटे आपके शानदार हो जाते हैं। जब भी आकाशवाणी रेनबो से आप जुड़ते हैं तो आपके दिल की बात होती है, यहाँ पर बातें दिल से दिल तक होती है। और फिलहाल सिटी लाइट्स हो रहा है तो आपकी सिटी की बात हो रही है, और सिटी भी तो आपके दिल के करीब ही होता है ना, आकाशवाणी रेनबो की तरह। तो सुनते रहिए और इंजॉय करते रहिए, आपके शहर में क्या कुछ घट रहा है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ में गाने जो पेश किए जा रहे हैं वो भी आप ही की पसंद के, जबरदस्त, आपकी शाम को एकदम हसीन बनाने वाले। मौसम ने तो ऑलरेडी बना रखा है। और आपको बता दूं कि अब ना पोल्यूशन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। कैसे बताती हूँ ना, इतनी भी जल्दी क्या है। एंजॉय तो करिए इस गाने को, इस शो को और बबिता त्रिपाठी की बातों को।

देखिए जी, अगर जरूरत से ज्यादा आपने पोल्यूशन कर दिया तो नैया डूब सकती है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि ना अभी जो डस्ट पोर्टल 2.0 बनने वाला है, लॉन्च होने वाला है ना अगले वीक, क्या पता लॉन्च हो ही जाए, जल्द से जल्द ये होने वाला है। और ऐसे में ना एआई मॉनिटर कर रहा होगा कि कहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है, कहां से ज्यादा धूल उड़ रही है, और जो नॉर्म्स बने हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। कोई कंप्लेन करने नहीं जाएगा, एआई से सब कुछ पता चल जाएगा। और जहां पर ये नॉर्म्स फॉलो नहीं होंगे उनकी तो खैर नहीं, उनको ध्यान रखना होगा कि नैया डूबे ना। तो भैया आप सब भी अलर्ट हो जाइए कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन अगर आपने फैलाया तो प्रॉब्लम हो सकती है, जरा ध्यान से। दिल्ली एनसीआर वालों, फिलहाल दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली में ये कानून आ जाएगा। फिलहाल आप सुनते रहिए सिटी लाइट्स, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी।

ये आकाशवाणी रेनबो आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी। शो चल रहा है सिटी लाइट्स और आपके शहर में क्या कुछ खास हो रहा है बताने के लिए फिलहाल मैं रेडी हूँ। लेकिन ये गाना क्या रहा है ना कि उससे पहले मैं प्ले हो ही जाता हूँ, तो हो चुका है प्ले तो उसको कौन ही रोक सकता है। चलिए इसको सुनते हैं, लौट कर आते हैं और जानते हैं कि आखिर नया क्रिकेट स्टेडियम किधर बन रहा है भाई।

देखिए जी, परीद की बात तो पूछिए ही मत। क्रिकेट से जो परीद है हम इंडियंस की, वो बेहतरीन है और ये बताने की जरूरत नहीं है। हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा क्रिकेट के प्रति दीवाना मिल ही जाता है, और कई बार तो पूरा का पूरा परिवार ही दीवाना होता है। और उनके बारे में क्या ही कहें कि जो कुछ भी कर गुजरते हैं क्रिकेट में हार या जीत के पीछे। फिलहाल आपको बता दूं कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो भी, नहीं खेलते हैं, क्रिकेट से प्रेम करते हैं तो भी, आपके लिए खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हैं, कनेक्टिविटी तो है ही जबरदस्त दिल्ली एनसीआर की। ऐसे में जब क्रिकेट स्टेडियम बनने की बात हो तो खुशखबरी बनती है हम सबकी। तो राजनगर एक्सटेंशन में क्रिकेट स्टेडियम बनने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 33 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है जी, और ये क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, और यहाँ 45,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। यानी छोटा मोटा स्टेडियम नहीं बन रहा है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। और स्टेडियम परिसर की पार्किंग की बात करें तो 2,510 वाहनों की पार्किंग यहाँ की जा सकती है। और भी बहुत कुछ है खास, जब अपडेट्स आती जाएंगे आपको बताते जाएंगे, लेकिन ये हम सब के लिए खुशखबरी है कि नहीं? ऐसे ही सुनते रहिए दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो, और मैं बबिता त्रिपाठी आपके लिए लेकर आती रहूंगी बेहतरीन अपडेट्स दिल्ली एनसीआर की। और गाने तो सुन ही रहे हैं आप।

मैं ये सोच रही थी ना कि अब गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं तो कहाँ घूमने जाएं, लेकिन अब क्या करें। जैम जहां भी जाओगे दिल्ली एनसीआर से बाहर ऐसा लगेगा पहले तो इतनी सारी गर्मी यहां पर, और उसके बाद फिर अगर हम सोचे कि किसी ठंडक वाले इलाके में आसपास की जगहों पर चले जाते हैं, अपनी गाड़ी से ही चले जाते हैं, तो क्या करें। सबसे पहले दिमाग में आता है इतना लंबा चौड़ा जाम कौन झेलेगा, सभी छुट्टियों पर निकल जाते हैं ऐसे टाइम में। और ऐसे में जब ऐसी खबर आए कि भाई नैनीताल जाना अब आसान हो जाएगा, मतलब 3 घंटे आपके कम हो जाएंगे लगभग, तो ऐसे में आपके लिए तो राहत की सांस वैसी ठंडी ठंडी हवाओं जैसी हो जाएंगी इस गर्मी में। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी मेरे पास न्यूज है तो मैं ऐसी बातें कर रही हूं। और बरेली से हल्द्वानी के बीच में आपको बता दूं कि 100 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या, तो आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेस वे 4 लेन का होगा और लोग यहां से बिना जाम झंझट के फर्राटा भरते हुए निकल सकेंगे, क्योंकि यहां पर जो सड़कें बनाई गई हैं पहले से वो उनको चौड़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जगह दी गई है। और ऐसे में होगा क्या कि जब आप इस रूट से दिल्ली से नैनीताल जा रहे होंगे तो आपको रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, पंतनगर, बहेरी सहित कुछ जगहों पर जो जाम मिलता है ना, क्योंकि वहां भारी ट्रैफिक रहता है, उसकी वजह से जो समय की बर्बादी होती है वो सब खत्म हो गया। और ऐसे में इस एक्सप्रेसवे का आप फायदा उठाएंगे आने वाले टाइम में, और आप 3 घंटे कम में यानी फटाक से नैनीताल पहुंच जाएंगे। सुनते रहिए ऐसी खबरों के लिए सिटी लाइट्स ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो जी आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े हैं दिल से दिल तक हमेशा की तरह। आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी और शो चल रहा है सिटी लाइट्स, यानी दिल्ली एनसीआर में जो कुछ भी नया ताजा और आपके लिए बेहतरीन हो रहा है ना, वो सब आप तक पहुंच रहा है ताकि आपको अपने शहर में हो रहे बदलावों के बारे में पता रहे, उसका पूरा का पूरा लाभ उठा पाए। अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में आप सोच रहे होंगे कि ये जो गर्मी है ना, इससे अब राहत मिलने वाली है जब बारिश होगी तब। लेकिन बारिश होते ही नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे एक होती है जल भराव की, और ऐसे में कई बार हम बड़े इरिटेट होते हैं, बाहर निकले और पानी भरा हुआ है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम डिले हो जाते हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है कई बार कि ये जो पानी है वो निकले, उसके बाद हम कुछ कर पाए, बाहर निकल पाए, क्योंकि लगातार बारिश होती है कई बार। तो लुटियंस दिल्ली में कुछ तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वैसे तो बहुत सारी तैयारियां पहले से की जा रही हैं और लगभग 80% नालों की सफाई पूरी कर दी गई है, लेकिन इस बार कुछ खास तैयारी है। इस बार सेंसर युक्त पंपिंग सिस्टम लगाए गए हैं और 600 mm की पाइपलाइन बिछाई गई है। ऐसे तमाम उपाय किए

जा रहे हैं ताकि जल भराव बिल्कुल ना हो, और अगर हो तो वो फटाफट खत्म हो जाए। और ये जो सेंसर युक्त पंपिंग सिस्टम है ये क्या काम करेंगे आपको पता है? जैसे ही ना जलभराव की समस्या होनी शुरू होगी वैसे ही ये अपना काम शुरू कर देंगे और ऐसे में ये पानी को वहां से निकाल फेंकेंगे और ऐसे में जलभराव का नामो निशान नहीं होगा। फिलहाल ये कुछ ही जगहों पर है लेकिन जिस तरह से जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है उसके हिसाब से आगे भी जो कुछ भी किया जाएगा वो अगर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो इस तरह का जो निवारण है वो सामने आएगा। और भी कुछ जो होगा वो अगर आपको जानना है तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। सारे अपडेट्स यही होते हैं सिटी लाइट्स में और वैसे भी आकाशवाणी रेनबो पर हर घंटे कुछ खास विषय पर बात होती है और अपडेट्स आप तक पहुंचती हैं। फिलहाल सिटी लाइट्स बबीता त्रिपाठी के साथ होली आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

यह आकाशवाणी रेनबो और आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। चलने का वक्त हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन आपको बता दूं सिटी लाइट चल रहा है और जाते जाते अपने शहर की एक और अपडेट देती जाऊं। ई रिक्शा बहुत सारे हो रहे हैं और ऐसे में कई बार दिल्ली एनसीआर में जाम लगने की समस्या बढ़ जाती है। तो फिलहाल दिल्ली के लिए आपको खबर यह है कि जो दिल्ली की तरफ की गवर्नमेंट की तरफ से ना एक कोशिश की जा रही है कि जो ई रिक्शा है उस पर लगाम लगाई जाए। कई बार अवैध तरीके से या बिना रजिस्टर किए हुए वाहन ही सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं अनियंत्रित, ऐसे में खतरा हो सकता है सेफ्टी को लेकर भी और जाम की समस्या तो होती है। तो ऐसे में जो डिसाइड किया गया है वो ये कि कुछ सीमित एक संख्या है उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ताकि ये जो वाहन है वो कम हो सके, अवैध रूप से जो दौड़ रहे हैं उस पर भी लगाम लगाई जा सके। तो इस बार अब ध्यान दिया जाएगा कि नए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन एक सीमा से ज्यादा नहीं किया जाएगा, ताकि बहुत ज्यादा यहां पर जाम ना हो और खतरे ना हो। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं रिक्शे से तो नहीं, ई रिक्शे से तो नहीं, लेकिन दिल्ली की मेट्रो का सहारा लूंगी और अब यहां से निकलूंगी और वीरदमन आएंगे, आप सबके मैसेजेस लाएंगे, मतलब आप सब मैसेजेस भेजेंगे जो भी टॉपिक बताएंगे उस पर और वो शामिल होंगे। तो अपने मैसेजेस रेडी रहिए और रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। फिलहाल बबीता त्रिपाठी आपसे कहती है टाटा बाय, जल्द मिलूंगी, promise।

0: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बदला है मिजाज आज इस कदर मौसम का, हवाओं में एक अलग सी रवानी आई। शुरुआत करते हैं आज की इस हसीन शाम की, जैसे सदियों बाद कोई प्यारी सी कहानी आई। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। और कैसे हैं, गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल गई होगी, है ना, क्योंकि हल्का हल्का जो मौसम ने अपना मिजाज बदला है ना, तो राहत तो महसूस हो ही रही है। और साथ में आकाशवाणी एफएम रेनबो का साथ है, तो भाई सोने पे सुहागा तो हो ही गया।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आज कौन सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। टॉपिक यह है कि बचपन की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या थी। जी हाँ, बचपन की सबसे बड़ी बेवकूफियां हम करते रहते थे ना, वो बचकाने काम जो हम सब ने कभी ना कभी तो किए ही है ना, कभी ना कभी किए हैं और किए होंगे भी। जैसे जादू की पेंसिल खोजना, कार्टून देखकर उड़ने की कोशिश करना। क्या आपने भी ऐसा कोई काम किया है जिसे आज आप अगर याद करें तो हंसी आ जाए। होता है ना, बचपन में कई ऐसी नादानियां, कई बेवकूफियों वाले काम हम करते थे। तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, क्या बचपन में ऐसा कोई बेवकूफी वाला काम किया है या नादानी वाला कोई काम किया है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान आ जाती है उस बेवकूफी वाले काम को याद करके। तो जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक है बचपन की सबसे बड़ी जो वो नादानियां और बेवकूफियां हम करते थे ना, वो बचकाने काम जो हमने सभी ने कभी ना कभी किए होंगे दोस्तों, जैसे जादू की पेंसिल खोजना, कार्टून देखकर उड़ने की कोशिश करना, और कुछ ना कुछ ऐसे नादानी वाले काम हमने किए ही होंगे। तो आपने भी कोई ऐसा काम किया है? अगर किया है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 हमारा नंबर है, जिस पर आप भेज सकते हैं कि अगर बचपन में कोई ऐसी नादानी या बेवकूफ़ी वाला काम आपने किया है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर वो प्यारी सी स्माइल आ जाती है 180 डिग्री वाली, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे दो लाइनें बचपन की उन यादों में कुछ जोड़ना चाहूँगा। ना कोई तमन्ना थी ना कोई बहाना था, बचपन का वो दौर कितना सुहाना था। ना कोई तमन्ना थी ना कोई बहाना था, बचपन का वो दौर कितना सुहाना था। परिंदों की तरह उड़ते थे हवाओं में, नादानियों में भी छुपा सारा जमाना था। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: प्यास है।
1: जी हाँ, बंदा ये बिंदास है, चैनल भी बिंदास है और आपके साथ मैं हूँ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और आज कई हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं में से एक हैं युवांश और आयुष और उनके पापा, जी हाँ पवन सहरावत हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और कह रहे हैं अभी तो हम बच्चे हैं भाई, हम तो अभी नादानियां करेंगे, तो ऐसी नादानियां अब हम करते ही रहेंगे तो याद क्यों करना उन चीज़ों को, क्योंकि ये तो अभी एड ऑन होते रहेंगे। क्या बात है, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। अगर आपने भी कोई बचपन की ऐसी नादानी की है जिस पे आपको आज भी हंसी आ जाती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद सरफराज आलम, चौकीहट दर्शना बाजार अरिया बिहार से लिखते हैं कि यादों का खंजर दिल में उतर जाता है, हर बीता मंजर आंखों में ठहर जाता है, सरफराज लाग छुपाओ दर्द जमाने से, पुराना जख्म अक्सर यादों से उभर जाता है। क्या बात है, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। बूंदों की सरगम गिरी मन दीवाना हो गया, बूंदों की सरगम गिरी मन दीवाना हो गया, पेड़ पंछी गा उठे दिलकश तराना हो गया, धूप गर्मी और तपिश से बेपनाह राहत मिली, आप आए शो में तो मौसम सुहाना हो गया, मौसम सुहाना हो गया। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखते हैं, क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू सो मच इन प्यारी पंक्तियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से लिखते हैं कि हम भी हैं आपके इस प्रोग्राम में, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए, रेडियो के पीछे छुप करके हम गाना गाते थे, सोचते थे कि हमारे घर वालों को हमारी आवाज़ रेडियो में सुन

सुनाई देगी। जब पता लगता था तो बहुत हंसते थे, आज भी हंसते हैं। क्या बात है, होता है होता है। और हमारे साथ मोहम्मद वकार फरीदी, मोहल्ला हलवाई शिरकुट, जिला बिजनौर से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी स्वागत है। लिखते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना और नादान होता है, बचपन में शक्तिमान अलिफ लैला इन सब में जादूगर होते थे, तो जादू होता था, सोचते थे कि कैसे उड़ जाते हैं, और पता चला अब सब ड्रामा होता था। ऐसा कुछ नहीं होता था रियल लाइफ में। बिल्कुल, बचपन की वो नादानियां आज भी याद आती हैं, लेकिन वो बचपन के जो दिन होते हैं ना, बड़े ही सुहाने होते हैं। ना कोई टेंशन होती है, ना कोई गम, बस चैन की नींद से सोते हैं। आज तो हम थक हार कर सो जाते हैं, लेकिन वो बचपन की नींद शायद लौट के नहीं आती है ना। वो नींद जो होती है ना, चैन की नींद सोते थे, वो शायद नींद ही अलग होती थी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद इम्तियाज जौहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब जब जामुन के पेड़ पर जामुन के मौसम में काफी ऊपर तक चढ़ जाते थे, तब उतरने में सबसे बड़ी कठिनाई होती थी, जिसके कारण मैं कभी कभी ऊपर से कूद जाता था, और जब चोट लगती थी तो घर में अलग ही मार पड़ती थी। ये तो होता था, है ना, मुझे भी हुआ है, मैंने भी किया है, तो आप सबने भी किया होगा। क्योंकि जामुन के पेड़ पर जब चढ़ते थे ना, तो कई बार ऐसा होता था कि डाली भी टूट जाती थी, और उसके बाद जो चोट लगती थी और उसके बाद जो मार पड़ती थी, वो अलग ही मज़ा होता था, है ना, सोने पर सुहागा हो जाता था। आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से लिखते हैं, मैंने तो नहीं, बट मेरी सिस्टर ने पड़ोस के एक भैया को स्कूटर की हवा में उड़ा दिया था और रेस देके। अरे क्या बात है, स्कूटर की हवा में उड़ा दिया था। फिलहाल आपके लिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक, और उसके बाद कुछ और मैसेजेस लूंगा दिल से दिल तक।

0: जी आओ बम बम बोले आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और दोस्तों मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूं वो है बचपन की। जी हां, बचपन में ऐसी कोई नादानी आपने भी की होगी, कोई ऐसी गलतियां होती है ना कि जिन्हें याद करके आप अक्सर आज भी मुस्कुरा देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात होगी। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कोई आपने ऐसी बचपन की कोई नादानी की है जिसे आज भी आप याद करके हंस देते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और कुछ हमारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं जिन्होंने अपनी जो ये बचपन के नादानी की दास्तान हमारे साथ शेयर की है। और गंज डुंडवारा से शामसुल कमर राही लिखते हैं कि बचपन की तमाम यादें हैं जिन्हें याद करके अक्सर हंसी आती है। एक दिन की बात है, हम भाई बहन स्कूल से आ रहे थे, बहुत तेज धूप थी और छतरी एक थी। हम रास्ते भर में एक दूसरे से खींचते हुए घर लौटे, माँ ने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम तो बहुत पसीना पसीना हो। तो हमने डरते हुए बताया कि छतरी हमने खोली ही कहाँ थी, बस खोलने को लेकर रास्ते भर में खींचा तानी चल रही थी। क्या बात है, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और हमारे एक और लिसनर हैं जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है, ये इन्होंने नाम प्रवीण शर्मा लिखकर भेजा है। तो दोस्त मैं हूं आपके साथ वीर धवन, आज प्रवीण जी नहीं है, मैं वीर धवन सिंह आपके साथ हूं। और लिखते

कि हमारे दोपहर से बारिश हो रही है, खुशगवार मौसम के बीच बैठकर आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। देहरादून से ये आलोक मवार और मिनी ने मैसेज लिख के भेजा है, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से। और अगला मैसेज हमें भेजा है शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता ने। बचपन तो बचपन ही होता है, भयंकर गर्मी से भी हम दोपहर को नंगे पांव घर से 2-3 किलोमीटर दूर राजवाहा नहर में स्नान करने जाया करते थे। दोपहर में कभी घर नहीं रुकते थे, कभी किसी के ट्यूबवेल पर नहाने चले गए, कभी बाग में आम जामुन और अमरूद तोड़ने चले गए। ऐसे बहुत सी बचपन की घटनाएं जिन्हें याद करके आज भी हंसी आती है और चेहरे पर वो 180 डिग्री वाली स्माइल आ जाती है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, भुवनेश ने अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं, आई वुड लाइक टू से डेट इन माई चाइल्डहुड आई हैड अ हैबिट ऑफ प्लेइंग विद एनी बॉक्स, सो वन डे आई पिक अप वन ऑफ द बॉक्स बट इट डिड नॉट नो डेट माई मदर हैड स्टोर सम ऑयल इन इट। और जो उन्होंने ये बता रहे हैं कि बचपन में हमें आदत थी कि कोई भी अगर हमें डब्बा वगैरह मिल जाता था तो हम उससे खेलने लग जाते थे, तो हमें एक बारी ऐसे ही डब्बा मिल गया और हमें नहीं पता था कि माँ ने उसमें तेल रखा हुआ है, वो जो तेल था वो पूरा गिर गया एंड जो माँ थी वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट एक याद है जो आपके साथ शेयर की। बहुत खूब बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और हमारे कई और दोस्त हैं जिन्होंने ये मैसेज हमें लिख के भेजा है, और ये भेजा है किन्होंने, ये जोया ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी थी सुपर गर्ल बचपन में अपने परिवार के साथ जब हम चाणक्यपुरी में रहते थे, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी उस फिल्म के बाद और मैं भी सुपर गर्ल बनना चाहती थी, पर पता नहीं था कि कैसे बनूंगी। और सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं, बचपन का दूसरा नाम है भोलापन, और इंसान बचपन में इतनी नादानियां करता है कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया। और गन्नौर से आदिल कमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली लिखते हैं, बचपन में हम इतने बड़े बेवकूफ थे, अपने बाग में थे, हमारे दादाजी हमें अकेला छोड़कर कहीं चले गए, एक अजनबी बाग में आया और आम तोड़कर एक पूरा का पूरा थैला भरकर ले गया और चला गया, हम पागलों की तरह उन्हें देखते रह गए, कुछ बोले ही नहीं। होता है बचपन की नादानी ऐसी होती हैं। और मुरादाबाद से, दुल्हापुर ग्राम से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, तो आपने अपने बचपन की कोई ऐसी घटना नहीं हमारे साथ शेयर की, क्या कोई बचपन में ऐसा आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा ना, तो जल्दी से लिखकर भेजिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ओखला संगम विहार दिल्ली से, आपका भी तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद आपके मैसेजेस का सिलसिला जो चल रहा है ना उसे शामिल करेंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: जी हाँ, आपके साथ हूँ मैं, आपके साथ आपका दोस्त दिल से दिल तक वीर दमन। और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला में। एक समय है छोटे से अंतराल का, तो कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स।

0: इंडिया की ओरिजिनल आवाज आकाशवाणी आकाशवाणी ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। और आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज का टॉपिक है कि क्या बचपन में आपने भी कोई ऐसी नादानी की है, कोई ऐसी जो होता है ना बचपन में कर देते हैं गलतियां, कहते हैं कि अरे ये बचपना है, और ऐसी कोई नादानी जिसे आज भी आप याद कर कर हंस देते हैं और आपके चेहरे पर 180 डिग्री की स्माइल आ जाती है। तो जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटपटगंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, आपका भी तहदिल से स्वागत है। और अगला मैसेज हमें भेजा है दिनेश कुमार ने। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से लिखते हैं और इन्होंने शायद जो थोड़ा सा लिखते हैं शब्दों का हेर फेर हो गया है। मैसेज मसाला मिक्स में हाजिर हूँ नेपाल से, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बचपन में बहुत सारी हरकतें की हैं हमने, ये भी समझकर पूछता हूँ, हंसी भी आती है। दोस्तों के टिफिन चुराए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एग्जाम्पल हैं, बहुत जो है ना ये लंबी लाइन है, लंबी कहानियां हैं, क्या बात है। दिनेश जी आपने छोटे और कम शब्दों में पूरी कहानी लिखकर भेजी, थैंक यू सो मच। और अगला मैसेज हमें भेजा है हीरामणि वर्मा ने भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मेरी बचपन की बेवकूफ़ी कहो या डर, मैं अपनी छाया से डरता था और मम्मी दादी को बोलता था मैं चलता हूँ तो मेरे साथ में कौन चलता है, रुकता है तो रुक जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। और ये हमें मैसेज अगला जो भेजा है, ये भेजा है किन्होंने, ये लिखते हैं शुभ संध्या और कहते हैं कि मोर पंख विद्या पौधे की पत्तियां रखने से विद्या नहीं आती, विद्या पढ़ने मनन करने से समझने से आती है। राजेश बल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से लिखते हैं। और सही कहा कि बचपन में हम अक्सर वो पत्तियां और वो रख देते हैं ना किताबों में, इससे विद्या आएगी, हमें पढ़ाई आएगी, हमें ज़्यादा मतलब याद थोड़ा सा करेंगे तो देर तक याद रहेगा, ऐसा अक्सर हम भी एक दिमाग में लेकर ऐसा ख्याल आता था, सोचते थे। अनु बरवाल बरनवाल बिहार से लिखते हैं, मैं अपने भोला और फ्रूट लेकर जाया करती थी, झोला और फ्रूट लेकर जाती थी स्कूल टाइम में और बीच क्लास में ही खा लेती थी झोले से, सर गुस्सा करते थे। एक दिन क्लास टीचर ने झोला पकड़ कर उल्टा कर दिया और एक क्लास एक की बात है, और अच्छी बात यह है कि वो क्लास टीचर 10th तक दूसरे स्कूल में फिर मिल गए। क्या बात है, बचपन स्कूल जाते गलत काम करते थे, जब बरसात में गंदा नाला आता था फांदते थे, उसमें गिर गया था मैं एक बार, तब 5वीं क्लास में पढ़ता था, फिर दोस्तों ने हाथ पकड़ कर निकाला, तब मैं कीचड़ में लिपटा था, वैसे ही घर आकर नहाया, उसके बाद खूब पिटाई हुई घर पर और आज भी याद है। अनिल शर्मा सरिता विहार से लिखते हैं, क्या बात है। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, मेरे बचपन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, स्कूल से जाने से डरता था और पढ़ाई नाम से डर जाता था, और अगर रिश्तेदार स्कूल में छोड़कर आए तो मैं स्कूल से भाग जाता था और इमली पेड़ की इमली तोड़कर दोस्तों के साथ खाया करते थे। क्या बात है, बहुत खूब। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है रवि जी ने मेरठ से, बचपन की एक नादानी याद है, बारिश जोरदार थी, सड़क पर एक सज धज के महिला के पास आकर पैरों से छप छप करके पानी से भिगो दिया, महिला का गुस्सा देखने लायक था। बचपन में ऐसा अक्सर हम नादानी करते थे, कई बार ऐसा होता था कि साइकिल लेके जाया करते थे और जब बारिश का पानी खड़ा होता था तो साइकिल उसके बीच में से निकालते थे और देखते थे कि भाई पानी की जो वो धार है वो कितनी तेज कितनी दूर तक जाती है, और ऐसा हमने भी किया है, आपने भी किया होगा, ऐसे बचपन की नादानियाँ बहुत सारी हुई हैं। और मीरापुर से हमें मैसेज भेजा है कि हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और

लिखते हैं कि मीरापुर गांव से भूमा से आर्यन जुड़े हुए हैं। मेरे बचपन की सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि मैंने टीवी से हनुमान शो देखा और शो देखने के बाद मैंने हनुमान की तरह उड़ने की कोशिश की थी। मैं बेड पर लेटकर हनुमान जी की तरह उड़ने की फीलिंग ले रहा था। क्या बात है, बहुत खूब।

0: दोस्तों आपके भी बचपन में ऐसी कोई नादानी हुई होगी, कोई ऐसे भोलेपन में कभी ना कभी कुछ ऐसी शरारत की होगी जो अक्सर आज भी आपको याद आती होगी, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं ऐसी नादानी। 9868107070 हमारा नंबर है जिस पर आप लिखकर अपने नाम और शहर के नाम के साथ लिखकर भेज सकते हैं। अरुण कुमार हैं बठिंडा से, लिखते हैं, बचपन में मैं और मेरा दोस्त हम मिलकर घर में पड़े खाली गत्ते के डिब्बों को जोड़कर रावण और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करते थे। उसमें पटाखे भरते थे और दशहरे की शाम उन्हें गली मोहल्ले में ले जाकर जलाया करते थे। मोहल्ले वाले अक्सर जल्दी करते थे, कहते थे इन्हें जल्दी से जल डाओ, बाद में हमने दशहरे का मेला भी देखने जाना है। कैसे कैसे बचपन में हम करते थे ना, और वो आज हमें याद आते कि मोहल्ले वाले कहते थे जल्दी चलाओ हमें मेला देखने भी जाना है। और सलार पहलगाम कश्मीर से लिखते हैं पर ज्यादा मिराज उर्दीन, हम भी आपके साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है जी। और हमारे साथ कुछ और मैसेजेस भी आए हैं, हमें दोस्तों ने भेजे हैं। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा।
1: लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, परे थम, जवान पीछे से गाना गाएगा।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। समय हुआ है 6:55, क्योंकि दिल है बचपन का और समय है पचपन का। और सोनू बिजनौर से लिखते हैं कि हम जब छोटे थे, छोटे तो सभी होते हैं, छोटे होके बड़े बनते हैं ना, है ना, और कहते हैं कि हम सात भाई बहन हैं और सात भाइयों में से मैं सबसे छोटा हूँ। बचपन में मैं उनसे लड़के अपना काम बना लेता था, यहाँ कि मेरे बचपन में हम पतंग बनाते थे, मेरी पतंग सबसे ख़राब बनती थी, तो बड़े भाई बड़े अच्छे तरीके से पतंग बना लेते थे, उनसे मैं लड़के अपना काम बना लेता था। घर में सब लोग एक दूसरे को बताते थे कि उन्हें भाई मानी से अपना अपना बना लिया है, छोटे के कारण कोई भी नहीं बोलता था, मैं अपने आप अपना काम निकाल लेता था। और दीवारों पे जब मिलते हैं, और भाई हम जब भी दीवारों पे मिलते हैं तो वहाँ भी आज भी वहाँ बात बोलते हैं कि यहाँ तो सबसे छोटा है, और कुछ ना कुछ अब भी मानेगा नहीं, तो मुझे हर बार ये सुनकर हंसी आती है। क्या बात है, जो छोटा होता है ना सब उसको प्यार करते हैं, तो वैसे भी वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटा है दे दो, है ना। तो बड़े भाई हमेशा अपना बड़ा दिल रखते हैं। और अगला मैसेज हमें भेजा है वीरू बख्शी ने, ये लिख रही हैं कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, थैंक यू। और बचपन की एक याद आती है कि हम सब पैसे मिलकर चिड़िया खरीदते लेते थे, और सब बुआ के बच्चे ने यहाँ कहा कि भाइयों ने कि उसको दाना डालो और पानी डाल देना, और मैंने क्या किया बताया नहीं। दोस्तों, अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त नज़दीक आ गया है, और आपके मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं। कुछ हमारे और दोस्त हैं, नीता अमरावती से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है। और एक मैसेज हमें भेजा है आनंद विहार से किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु ने रेलवे कॉलोनी से, और लिखते हैं कि बचपन में हम शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमकर ऊपर उड़ने की कोशिश करते थे और फिर वहीं गिर जाते थे, जिसे देखकर हमारे पूरे परिवार के सभी सदस्य हंसने लग देते। थैंक यू सो मच इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं नेवल वरण मल्लपण गोवा से, उनका मैसेज आया है, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है दोस्त। और सिकेट अरिया बिहार से रंजीत कुमार मंडल ने हमें मैसेज भेजा है, और प्रवीण चौहान ने खरगांव मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेजा है, और गुड्डू धाकड़ जी ने मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेजा है, इकबाल सिंह छावड़ा ने छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेजा है, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। समय का अभाव है दोस्त, इसलिए मैसेज नहीं ले पा रहे हैं। अंशी शर्मा ने हमें हस्तिनापुर से मैसेज भेजा है, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और भेरूलाल वक्तरिया धाकड़ ने हमें उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेजा है, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी म्यूजिक मस्ती में, तब तक मुस्कुराते रहिए, जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए। अब वीर धवन को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से, और आपसे मिलते हैं 8 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना।

0: है श्री शिव कुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: वेलकम बैक, यू आर ट्यूनिंग टू द प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स विद मी सुहासनी। सो वेयर आर ऑल माय लवली पीपल गॉन रेस्टिंग एंड एंजॉयिंग द वेदर? वेल, इन केस यू डू दैट, कमिंग अप नेक्स्ट इज ब्रेकिंग बेंजामिन विद डायरी ऑफ जेन। ऑफ कोर्स वी हैव मेंबर नंबर 5 द रूबिट्स एंड मोचो सिंगिंग अ लेडी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त वीर धवन। कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी है बिल्कुल अधूरी, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी है बिल्कुल अधूरी, जैसे बिना गरम गरम आलू के फीकी है कचौड़ी। आपने दिल से याद किया और आपके साथ हूँ मैं आपका दोस्त वीर धवन। एक बार फिर आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। तहे दिल से आपका स्वागत है। तो आ जाइए हमारे साथ डांस फ्लोर पे, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर चल रहा है म्यूजिक मस्ती। तुम्हारा दिल की गहराई में डूबा था मैं खुशी खुशी, तभी अचानक याद आया कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर, और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और हमारे साथ हैं प्रेमचंद प्रेमी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं धामपुर से, और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और इस वक्त मेलबर्न से जोया ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ हैं। जोया जुड़ी हुई हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। गुलफाम खान, साहिस्ता खान, आयन खान, अलीजा खान, डेली शाद्रा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपका भी

दिल से स्वागत है नंद त्यागी, मोदी नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और सुरेश वैष्णव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और कस्बा कनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजिया फराज, फरहीन फरहान, फायरा ताहिरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और कौन है, नवुल वरक मलपण गोवा से, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ मोहम्मद रकीब, दानिश खान, एकीब रजा आजाद नगर या बिहार से जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, बदलते वक्त से इंसान को घबराना कैसा, कल किसी और का था आज किसी और का है। आपका भी स्वागत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वीर दमन। उसने कहा कि ख्वाब में आया करो कभी, उसने कहा कि ख्वाब में आया करो कभी, हमने कहा कि रात में हम जाते नहीं कहीं।

दोस्तों, हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुमको है इंतजार, खुद पर यकीन और रब पर एतबार करो। अब हमें दीजिए इजाजत, यानी कि वीर धवन को, और अगला शो नमिता लेकर आई हैं। आपकी याद आती रही, कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगी। और अपना ख्याल रखिएगा और मौसम के साथ औसम हो जाइए और मौसम का मजा लीजिए। अब अपने दोस्त वीर धवन को इजाजत दीजिए। बाय।

एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार, क्योंकि आपकी याद आती रहे। दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नवता के साथ।

0: एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। हमेशा कहती हूँ, यादें अच्छी हैं, कड़वी हों या मीठी। कड़वी यादें कुछ सिखा जाती हैं और मीठी यादें मुश्किल वक्त में भी होठों पर मुस्कान ला देती हैं, है ना अच्छी। तो यादों को समेटते रहिए,

0: चाहतों पे, मोहब्बतों पे दुनिया कायम है। जिंदगी के सारे रंग इसी से हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय

एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नविता के साथ। आपकी याद आती रही।

0: एजाज आपके अल्फाज हमारे नगमे सदाबहार, क्योंकि आपकी याद आती रही। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
9: तो और इस कार्यक्रम में हमारा आपका साथ यहीं तक, लेकिन 1 घंटे बाद फिर हाजिर होंगे हम लेकर रंग है महफिल। आप रहेंगे ना हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान

दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वान हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल सेमीफाइनल में हार गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: Welcome back. You're tuned into the program that is In the Groove, and I also have received a message from Khushbu Jain. She says, "Hi, Suhasini ma'am, good to hear you. Can you please play any Britney Spears number? Saw her on social media and felt how time changes everyone." That's absolutely true. So is the songs. They were a hit in late 2000s, and imagine 26 years later. Roundabout, give and take some few years, everybody has changed. They have their own love stories and life stories. So let's move on and listen to none other than Britney Spears.

0: That was Cher singing Believe. Yes, we are all over the place, but yes, this is the nostalgia that's coming back to jump around, and the songs that feel so close to our hearts that you can sing along and enjoy the music at the same time. So let's take a little break. We'll be back with Not Breaking Your Heart by Tayo Cruz.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई. क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है.
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है. सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी. आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है.

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Welcome back. You're tuned into the program that is In the Groove. And of course, we have Enrique Iglesias back on this show. So let's move on because the playlist is right now full

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल

लैब पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खामोशी भी बोलती है बहुत कुछ मोहब्बत में। चेहरे पर लिखना, आंखों को पढ़ना, ये सऊर मोहब्बत वालों को आता है। करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूँ और गुनगुनाऊं उसे, जो हम सफर सरी मंजिल बिछड़ रहा है, अजब नहीं है अगर याद भी ना आऊं उसे।

0: एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। रंग गए महफिल दिल से दिल तक।

रिश्ते एक बार टूट जाएं, तो फिर जुड़ते नहीं, गांठ रह जाती है। पर उसे एक खूबसूरत मोड़ दिया जा सकता है और उसके लिए वक्त का इंतज़ार नहीं करना होता। जो कदम आगे ले जाए उसके लिए हर वक्त सही है, नहीं?

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी

0: आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नविता के साथ। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM 3 के साथ, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। ये पद भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन पदों में से एक माना जाता है। इससे पहले वे नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों

और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।

0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद।

अब मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया।

चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा।

0: म्यूजिक मस्ती
1: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल तीन नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है।

0: विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, आइए अब सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: का जवानी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बबल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में या...

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के

0: मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारे का मां।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के

0: आप पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन के साथ मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।